are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: लवाज कल से राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में बेहद खूबसूरत गाना और शो की शुरुआत ऐसी हो तो मजा ही आ जाता है, फिर तो पता ही है ये सब बढ़िया एकदम। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, तनिषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर। अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। वेंसडे का दिन, सितंबर 2nd, कैसे हैं आप? वीकेंड आ गया है ऑलमोस्ट, यस, बस कल का दिन और फिर बल्ले बल्ले फिर है हमारा BTS। जी हाँ, फ्राइडे को रियादा मेडिकल सेंटर में, डू नॉट फॉरगेट दैट। ऑल्सो हालचाल बताएं अपने, बढ़िया सा गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दो, ऐसे अटेंडेंस भी लगानी होती है, मुझे पता चलना चाहिए कि आप सुन रहे हैं यार। एंड टू ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग टू वर्क राइट नाउ, बी वेरी केयरफुल, ड्राइव सेफली एंड अपना ख्याल रखें, और अगर बच्चे आपके साथ हैं तो ज़रा एक प्यारा गुड मॉर्निंग वॉइस नोट उनसे भिजवा दीजिए, अच्छा लगता है सुबह सुबह वो क्यूट क्यूट सी आवाज़ें सुनना। जी एंड दोज हु आर गेटिंग रेडी फॉर वर्क, बढ़िया है, सब टाइम पर हो जाए, जल्दी से रेडी हो जाए और काम पे निकल जाए। एंड आई होप एवरीबॉडी हैज एन अमेजिंग डे टुडे।
1: नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना
0: सब पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह।

0: जी दिल चाहता है. बाकी अभी अभी रीयूनियन हुआ है, दिल चाहता है के सारे स्टार्स का. इट्स बीन आई थिंक डेकेड्स ऑफ दिस मूवी, सो इसी खुशी में.
1: मैं शायर तो नहीं,
0: कमाल, इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने लाइंड अप है आपके लिए, आप देख रहे हैं. जी, सो ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू इन दिस आवर. और भी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गाने, बहुत सारी बातें करनी है, पर पहले मैसेजेस 3311 1063 पर आ जाइए फटाफट से, या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर, और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: Hi, Radio Olive. Radio Olive. 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: Shahrukh Khan.
4: I'm in number one. Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस तनिशा को बिंदास मॉर्निंग में।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
8: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह की आवाज में दंगल मूवी से नैना, बहुत खूबसूरत गाना, और किस तरह से अरिजीत सिंह ने गाया है, मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि भाई ये फर्ट्स नहीं लग रहे हैं, वो बस गा रहा है, कमाल है यार ये इंसान। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड नाजनी जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, योर लाइफ विल इम्प्रूव ओनली व्हेन यू टेक स्मॉल चांसेस, एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट चांस यू कैन टेक इज टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। सो ट्रू, यू नो, सेल्फ अवेयर कहीं ना कहीं हम सब होते हैं, पर जो चीज़ें हम अपने बारे में जानते हैं उनको बदलने का फैसला जब हम करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप towards a better life. क्योंकि सबसे मुश्किल वही होता है यार, once you start doing that you get a hang of it, लेकिन start करना is like a task. और शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, cost of living is not expensive, it is the cost of lifestyle that is expensive. So true, ask me about that. बड़ा मुश्किल है जीवन. संदीप जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ डे एज ब्राइट एज योर स्माइल, मे दिस वीक बी एवरीथिंग यू होप्ड फॉर एंड मोर. Have a fantastic day. Have a blessed day, Jio Bindas. Harpal Sandhu from the Kansikrit. Thank you so much, Sandhu ji. Wishing you the same. And Zulfi ji ne bhi good morning bheja hai. Take time to do what makes your soul happy. Good morning. Yes, this is the most important one, you know. कि अपने लिए वक्त निकालो, जो आप करना चाहते हो ना उसके लिए वक्त ज़रूर निकालो. ऑब्वियसली हम अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए, यू नो, वी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ दे लाइक टू डू, सो दैट उनके साथ वक्त बिताया जाए, एक यू नो क्वालिटी टाइम स्पेंड हो, मेमोरीज बने. पर जो आपको पसंद है वो करना कभी नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

शंकर महादेवन साहब आपकी आवाज में दिल चाहता है मूवी से टाइटल ट्रैक सुने आपने रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और बहुत जोर से ऐसे ज्ञान आ रहा है तो जरा सुनिए। एक बार ठहर के सोचो, जहाँ जिंदगी है वहाँ स्ट्रगल तो रहेगा ही। क्या? जहाँ जिंदगी है वहाँ स्ट्रगल तो रहेगा ही, इसलिए सुकून और खुशी ढूंढनी पड़ती है मेरी जन, जिंदगी खुद लाकर नहीं देती। समझे? हम वेट करते रहते हैं कि यार कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। हमें फर्ज भी तो डालने पड़ेंगे ना, तभी तो कुछ अच्छा होगा। बैठे बिठाए चीज़ें कहाँ मिलती है, और अगर मिल जाती है तो वो उतनी जल्दी चली भी जाती है। सो यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स टू मेक योर लाइफ बेटर, टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, और ये कोशिश जिंदगी भर जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया है अब तो मुझे पूरी जिंदगी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। नो, दिस इज गोना कीप गोइंग, यू नो। सो नेवर लूज होप इन योर सेल्फ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल भेज रही हूँ मनवा लागे रे, ब्यूटीफुल ट्रैक अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में। सुनते रहिए रेडियो ऑल, जियो बिंदास मेरी जान।

Story of the day. Story of the day. आपने अक्सर सुना होगा कि नारियल के पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। वजह ये कि इसका हर एक हिस्सा हमारे बहुत काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिंपल सा फ्रूट किसी की जान भी बचा सकता है? पास्ट में जब कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं थे, तब डॉक्टर्स ने आईवी ड्रिप की जगह डायरेक्टली फ्रेश कोकोनट वाटर यूज किया है। एंड सरप्राइजिंग थिंग इज कि इट एक्चुअली वर्क्ड। एक सील्ड कोकोनट का पानी 100% स्टेराइल यानी बैक्टीरिया फ्री होता है। इसका सॉल्ट शुगर बैलेंस हमारे ब्लड से काफी मैच भी करता है, जिससे हमारी बॉडी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि इसमें पोटेशियम हाई होता है, यानी लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन अर्जेंट सिचुएशंस के लिए ये एक बढ़िया लाइफ सेविंग हैक है। तो अगली बार जब आप नारियल खरीदें, याद रखें कि आप नेचर का अल्टीमेट मेडिकल गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी

0: Tanisha.
1: याशिका से कह के आवाज में चमकीला मूवी से बड़ा ही खूबसूरत गाना. एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैवंट वॉच दिस मूवी, इट इज ऑन नेटफ्लिक्स, डू वॉच इट. बहुत बहुत अमेजिंग मूवी है. इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. और दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा दोनों ने ही क्या माइंड ब्लोइंग काम किया है. दिलजीत वॉज लाइक यू नो इन द कैरेक्टर. Amazing it was. तो जरूर देखिएगा. तनिशा के साथ हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. सो आज का जो मेरा सवाल है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में, मुझे नया नया पता चला है, तो ऑब्वियसली आई हैड टू आस्क यू. क्या पता आप में से कुछ लोगों को बताओ. सो आई वांट टू नो कि हम बोलते हैं ना जब भी लाइक 1000 or 2000, सो वी से 1K 2K, व्हाट डज दिस के स्टैंड्स फॉर? क्योंकि 1000 की स्पेलिंग में तो कहीं के आता नहीं है, तो ये के कहाँ से आया, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं जानना चाहती हूँ. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. This K in 1000, what does it mean? क्योंकि स्पेलिंग में K कहीं नहीं है 1000 की as far as I know. और हम फिर भी ऐसे ही बोलते हैं 1K, 2K, 20K, you know, 20,000 के लिए. So why do we use this K? I want to know. बताएं 3311 1063 पर. सुन रही हूँ रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.
2: रेडियो

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग हर जितन निशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: अरिजीत सिंह की आवाज और सचिन जिगर का म्यूजिक मुंजा मूवी से तेनु खबर नहीं ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज
0: और ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में मैंने आज सवाल पूछा था कि व्हाट डस के स्टैंड्स फॉर जब भी हम थाउजेंड की जगह पर के का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं क्योंकि थाउजेंड की स्पेलिंग में तो के आता नहीं है सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स ओवर हियर और उसमें से मोस्टली आंसर्स का जो फॉर्मेट है ना वो एकदम सेम है तो क्या आपने चैट जीपीटी किया है क्योंकि मैंने भी किया है और यही फॉर्मेट मुझे भी मिला था But well and good. You took out your time to do that. So thank you so much for that. And I've got quite a few answers over here. So the letter K in thousand, like instead of thousand stands for kilo, which is the abbreviation of thousand in Greek. जी, ये वहाँ से उठा के लाए हैं and that is why we use K. लैंग्वेज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यू नो हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पता ही नहीं है पर हम यूज़ किए जा रहे हैं एंड एज आई एम गोइंग डीपर इन टू दिस बिकॉज ये एक नया नया शौक चढ़ा है मुझे यू नो टू नो अबाउट द वर्ड्स उनका ओरिजिन वो कहाँ से आए हैं यू नो बेसिकली द एटिमोलॉजी ऑफ इट और इट इज़ वेरी फन एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डोंट वरी आपको इसमें थोड़ी पीछे छोड़ूंगी जो जो सीखती हूँ सब आके आपको बता देती हूँ Absolutely amazing track. इस गाने के साथ मेरी बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हुई है यार And this happens, right? किसी certain point of time पर जब हमने वो गाना सुना होता है और जब हम वो दोबारा you know after a long time सुनते हैं तो हम उसी time पर पहुंच जाते हैं है ना

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: ਕੇਸਰੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਓਨਲੀ ਔਨ ਰੇਡੀਓ 106.3 ਐਫਐਮ ਤਨੀਸ਼ਾ ਐਪ ਕੇਸ ਸੈਦ ਬਿੰਦਾਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਪਰ जी जो वेदर की बात कर ले, वैसे आज जब मैं ऑफिस आने के लिए सुबह सुबह निकली घर से बाहर, भाई हवा वॉज नॉट जो ऐसी तपती हुई हवा होती है ना यूजुअली एवरीडे, वो नहीं थी. इट वॉज स्टिल काम, थोड़ा सा थोड़ा ठंडा. आई विल नॉट से लाइक ठंडा बट यू नो पहले से बेहतर. एंड आई वॉज सो हैप्पी, मेरा इंस्टेंटली मूड अपलिफ्ट हो गया जैसे ही मैं बाहर निकली. एंड अभी जो टेम्परेचर मैं देख रही हूँ, इट इज 35 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 37. सो सेप्टेम्बर के आते ही चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. बट डोंट वरी, थोड़ा दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा. इट माइट गो अप टू 43 डिग्रीज और रात में 33 विल बी द लोएस्ट. सो अपना ख्याल रखिएगा. हवाएं थोड़ी तेज चलने वाली है, ये तो हमें मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही बता दिया था. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क वगैरह रखिए अगर आपको कोई एलर्जीज है, क्योंकि डस्ट होगी और उससे वो ट्रिगर हो सकती है. एंड हियर आई हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम सज्जाद जी. Good morning, Miss Tanisha. I would like to request one special birthday song for my beloved son, Sayed, who is celebrating his 7th birthday today. Arre Kamal! And kindly dedicate a lovely Hindi birthday song to him. It would make his special day even more memorable. Oh, so sweet. A very happy birthday to you, Sayed. I hope you have an amazing day. It's your 7th. Enjoy karo. And, you know, have lots of fun. And wishing you every good thing in life. God bless you. Also, kuch hi der mein I will be playing a birthday song for you. So do not go anywhere. Stay tuned. And Jio Bindas.
1: Ab suniye. Olive ka zabardast hai. Zabardast hai.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. नो रियली आई मीन इट. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है.

0: विद फन. ऐसे कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है वहां बैठ के उन्हें बता नहीं रहे हैं कि यू नो यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे और यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एवरी टाइम यू आर ईटिंग आफ्टर ईटिंग एंड बिफोर ईटिंग ऑल्सो. या सो ये ऐसे लेक्चर नहीं होगा. Fun activities planned around this and kids will have amazing time. उन्हें बहुत मजा आएगा और वो काफी कुछ सीख भी पाएंगे. So जल्दी से अपने बच्चे को register कर लो because today is the last day to register. Yes, खत्म. आज खत्म है registrations. आज बंद हो जाएंगे. So OR space अपने बच्चे का नाम लिखें और भेज दें 3311063 पर. 3311063 पर OR space your kid's name. ठीक है, हम मिलने वाले हैं 4th of September, दैट इज दिस फ्राइडे, सुबह 9 से 11 बजे तक रियादा मेडिकल सेंटर में. सुंदरी रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान.
1: हिट

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Ready? To learn,
2: yes.
1: To play,
2: absolutely.
1: To grow,
2: with Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ.
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स.
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट.

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All Over 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. And bhai, Ministry of Education and Higher Education ne introduce kar diya hai palm recognition system in government schools, and this is so good. The technology will be used to record students' attendance automatically. No present ma'am will be there anymore. I don't know if they still do that. मेरे टाइम पे तो होता था. ऑल्सो ये जो है वो स्कूल बसेस में भी यूज होगा टू मॉनिटर स्टूडेंट्स व्हेन दे बोर्ड एंड लीव. एंड द सिस्टम इज डिजाइन टू मेक अटेंडेंस फास्टर, इजियर एंड मोर एक्यूरेट. सही है एकदम. इट कैन हेल्प स्कूल्स एंड पेरेंट्स ट्रैक स्टूडेंट्स प्रेजेंस एंड मूवमेंट मोर एफिशिएंटली. एंड दिस इज सो गुड. यू नो द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. द इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ कदर्स एफर्ट्स टू यूज स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशंस इन एजुकेशन. एंड द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड to improve student safety and school transportation monitoring. It is so good for them. You know, parents will be aware when their student has boarded the bus, when they are leaving, and class mein jo attendance hogi, ab koi proxy nahi laga payega. Well, abhi ye schools mein aaya hai, jab ye college mein aayega na, phir pata chalega. You know what I mean. Sundar Radio Olive, Jio Bindas.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: मैं हूँ अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. खासियत सुना अपने राघव चैतन्य और जोनिता गांधी की आवाज में चांद मेरा दिल मूवी से. ये भी सुंदर मूवी है यार. मतलब मैंने जब रिव्यूज पढ़े थे तो आई वॉज लाइक अरे फिर सैयारा टाइप्स का कुछ बना दिया है. बट देन आई वॉच्ड इट. इट इज एक्चुअली रियली नाइस. और यू नो अनन्या पांडे एक्चुअली शॉक्ड मी इन दिस वन. आई लाइक्ड हर वर्क समहाउ. वेल या ओपिनियंस चेंज यू नो. वेल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वॉर्न किया है सभी लोगों को व्हाइल ड्राइविंग डू नॉट यूज हाई बीम हेडलाइट्स इनकरेक्टली. जी हाँ, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे ड्राइवर्स को. सो स्पेशली रात में तो उसे अवॉइड ही करें यूज़ करना जहाँ पर ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ डू नॉट यूज़ द हाई बीम. एंड ब्राइट लाइट जो है वो मोटरिस्ट के भी विजन को और कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट कर सकता है. सो देर इज़ अ चांस ऑफ एक्सीडेंट एंड वी डू नॉट वॉन्ट दैट. वी वॉन्ट यू टू बी सेफ एंड साउंड. एंड दैट्स वाई यू नो वी कीप रिमाइंडिंग यू ऑल दीज थिंग्स. दो पीपल आर वेरी स्मार्ट इन कतर. दे फॉलो ऑल द रूल्स. उन्हें पता है कि क्या सही है क्या नहीं है. एंड दे डू थिंग्स अकॉर्डिंगली. बट स्टिल जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू गाइज, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यूजिंग हाई बीम्स इनकरेक्टली इज ऑल्सो अ ट्रैफिक वायलेशन. सो देर विल बी रेपरकशंस फॉर दैट. सो अवॉइड डूइंग दैट एंड बी रिस्पॉन्सिबल एज यू ऑलवेज हैव बीन. यार आप लोग काफी समझदार हैं तो वो कंटिन्यू रखिए एंड कीप योर सेल्फ सेफ एंड साउंड. और बस सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. क्योंकि अभी जो मैं गाना भेजने वाली हूँ Crazy. It is such a beautiful track. I cannot stop listening to this one. Zain Zohaib ki awaaz mein Lost in Love. You're gonna love this one. Mujhe message chahiye is gaane ke baad ki kaisa laga aapko. 3311-1063 par. Stay tuned on Jio Bindaas. Cool song. Radio Olive par. Aane wala gaana. Cool song of the hour. Cool song of the hour.
1: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: Tanisha.
1: Kill Dil se Arijit Singh aur Neha Rajesh ki awaaz mein beautiful track Sajde only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par and Instagram pe abhi na kuch weird food combinations bahut viral ho rahe hain. Sare influencers use try kar rahe hain and it is horrible. मतलब मैं नहीं सोच पा रही हूँ. सो जो नॉर्मल वियर्ड ये फूड कॉम्बिनेशंस थे वो हमें पता है ना, मैगी चॉकलेट और नमकीन को चाय में डाल के खा लेना, ये सब हो रहा था सो फार. नाउ इट हैज़ रीच्ड टू अनदर लेवल. सो बेसिकली व्हाट एक्चुअली इज वायरलिंग वाओ ट्रेंडिंग राइट नाउ इज एक दो फूड आइटम्स को मिला के एक तीसरा फूड आइटम बनेगा जो कि यू नो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. So it is not that weird though. So अभी फिलहाल जो ट्रेंड कर रहे हैं वो है लेमन और सिनेमन एक साथ खाओगे तो कोका कोला का टेस्ट आएगा. जो सॉफ्ट ड्रिंक है कोका कोला उसका टेस्ट आएगा. देन दो सॉल्टेड चिप्स के बीच में टमेटो का एक स्लाइस रखोगे तो पिज्ज़ा का टेस्ट आएगा. इज़ इट पॉसिबल? शुगर डालोगे टमेटो के ऊपर और फिर खाओगे तो इट विल टेस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी. एंड द वियर्डेस्ट वन कि वनीला आइसक्रीम लेकर उसमें सोया सॉस डालोगे तो इट विल टेस्ट लाइक कैरमल. एंड दीज इन्फ्लुएंसर्स आर सेइंग दैट इट इज़ ट्रू. वनीला आइसक्रीम वाला तो बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से ट्रू हो रहा है और लेमन और सिनेमन वाला भी. बाकी आई डोंट नो, आई हैव माय डाउट्स. आई थिंक आई एम गोना ट्राई टू सी कि ये सच में काम करता है या नहीं. बट आपने इनमें से कोई कॉम्बो खाया है या ट्राई किया है यू नो देख कर ही रील्स पे तो ज़रूर बताइएगा क्या ये एक्चुअली ऐसा टेस्ट करता है. और ऐसा कोई वियर्ड कॉम्बो आपके पास भी है टू डू शेयर दैट विद मी 3311106 पर. सेंडिंग अ ब्यूटिफुल ट्रैक वीर जारा मूवी से आया तेरे दर पर दीवाना. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

Olive Bay. Story of the day. Story of the day. आपने अक्सर सुना होगा कि नारियल के पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। वजह ये कि इसका हर एक हिस्सा हमारे बहुत काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिंपल सा फ्रूट किसी की जान भी बचा सकता है? पास्ट में जब कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं थे, तब डॉक्टर्स ने आईवी ड्रिप की जगह डायरेक्टली फ्रेश कोकोनट वाटर यूज किया है। एंड सरप्राइजिंग थिंग इज कि इट एक्चुअली वर्क्ड। एक सील्ड कोकोनट का पानी 100% स्टेराइल यानी बैक्टीरिया फ्री होता है। इसका सॉल्ट शुगर बैलेंस हमारे ब्लड से काफी मैच भी करता है, जिससे हमारी बॉडी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि इसमें पोटेशियम हाई होता है, यानी लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन अर्जेंट सिचुएशंस के लिए ये एक बढ़िया लाइफ सेविंग हैक है। तो अगली बार जब आप नारियल खरीदें, याद रखें कि आप नेचर का अल्टीमेट मेडिकल गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी कोकोनट।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: हर सुबह 6 से 10 हर जिस्ता निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

अलका याग्निक की आवाज में। धड़कन मूवी से अक्सर इस दुनिया में महिमा चौधरी इतनी खूबसूरत लगी है इस गाने में, इस पूरी मूवी में यार, absolutely gorgeous. You're listening to Radio 11.6.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। और चाइना ने एक बहुत ही कमाल की चीज़ की है। सो जब हमारा कॉलेज एंडर होता है, हमारा जो लास्ट सेमेस्टर होता है, वट एवर आर मेजर इज, हमें उसके ऊपर डेजर्टेशन बनानी होती है, थीसिस करनी होती है, राइट? एंड वेन पीपल डू PhD ऑल्सो, तभी उन्हें डेजर्टेशन बनानी होती है। सो मुझे मेरे मास्टर्स के टाइम पे आई हैड टू मेक अ डेजर्टेशन व्हेन आई वाज डूइंग जर्नलिज्म। तो ना मैंने ऐसे गूगल से उठा उठा के लिख दिया। ऑब्वियसली इतना कष्ट कौन करेगा, मैं तो नहीं करने वाली थी। सो आई टुक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट फ्रॉम इंटरनेट, ओके? इट वॉज नथिंग ऑफ माई ओन, बहुत लिटिल बिट थोड़ा मेरा खुद का एक्सपीरियंस और रिसर्च जो रहा होगा वो डाला था। एंड उस डेजर्टेशन के बारे में मुझे याद भी नहीं अब कि मैंने किस चीज़ पे बनाई थी। सो आई डू नॉट थिंक आई एम अलोन, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स ने भी कुछ ऐसा ही किया था। सो आई नो अ लॉट ऑफ अस डू दैट। एंड चाइना ने टू गेट रिड ऑफ दैट फिजूल वाला वर्कलोड, दे हैव कम अप विद दिस रियली कूल आइडिया कि जब आप अपनी PhD के एंड स्टेज पे हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100-page डेजर्टेशन, आप एक नया प्रोजेक्ट इन्वेंट कर दो, अ नया प्रोडक्ट यू कैन इन्वेंट एंड दैट विल बी यूज एज योर फाइनल सेमेस्टर का ग्रेडिंग एंड एवरी थिंग के लिए। एंड दिस इज रियली कूल, आई मीन डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट ऑब्वियसली, बट दिस इज रियली अमेजिंग, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा एंड यू विल नो द निक्स एंड नैक्स ऑफ थिंग्स बिफोर एक्चुअली गोइंग फॉर द जॉब और बिफोर गोइंग एक्चुअली आउट देयर इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक दिस इज रियली नाइस एंड दूसरी यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज को भी ये अडेप्ट करना चाहिए। क्या लगता है आपको, डेजर्टेशन ज्यादा आसान है या फिर नया प्रोडक्ट, बताएं मुझे। 3311063 पर स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास। रेडियो

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
2: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
4: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha. Tumkeshwari from the movie Bhediya, only on Radio 11.6.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal raha hai yahan par. Aur September aa gaye ji, matlab saal ke ab sirf 4 mahine baki reh gaye hain. And people are deciding now, aise internet pe to decide kar rahe hain filhal, ki ab bas ho gaya, ye 4 mahine mein I need to get my life together. So, you know, it's trending right now. Everybody is trying to get their life in order. कि यू नो अगर मैंने अभी तक अपनी हेल्थ पे काम नहीं किया है, मेरा रेजोल्यूशन जनवरी में था, सितंबर आ गया, मैंने नहीं किया है. नाउ दीज 4 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर मी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एक यू नो फ्लो में मैं पहुंच जाऊं, उसके बाद आगे तो आदत हो जाती है. यू नो वो 21 डेज वाला जो सीन है, आई थिंक वो वही लेकर चल रहे हैं. एंड यू नो सम पीपल आर ट्राइंग टू चेंज देयर फाइनेंसेस, यू नो उनको बेटर तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. और नींद, ओ माय गॉड, काफ़ी लोग जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि भाई नींद प्रॉपर हो जाए, क्योंकि आधी हेल्थ प्रॉब्लम्स नींद ना होने की वजह से ही होती है. सो दैट इज़ सो ट्रू. प्रोडक्टिविटी, करियर, यू नो ऑल दीज थिंग्स पर लोग फोकस कर रहे हैं इस वक्त, कि अभी जो 4 महीने बचे हैं इन्हें ऐसे ही ज़ाया नहीं करेंगे, इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा और यू नो लाइफ को बेटर बनाने में ही होगा. तो क्या ऐसा कोई थॉट आपके मन में भी चल रहा है कि अभी यार 4 महीने रह गए हैं, आई नीड टू डू समथिंग, इफ यू हैवंट और यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो उसको और जोर शोर से करने का या फिर कंटिन्यू रखने का, सिंपल बताएं मुझे. और मेरा जो प्रॉमिस है कि बढ़िया गाने सुनाऊंगी, आई विल नेवर ब्रेक योर हार्ट मेरी जान, मैं सुनाने ही वाली हूँ पूरे साल. नो मैटर 4 महीने रह गए हैं, 5 रह जाए, 6 रह जाए, गाने यहाँ पे आपको एकदम बढ़िया ही मिलेंगे. और मैं बोलूं तुझे क्या? हाँ जी, और ये वाला भी आ रहा है.
1: रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा.
0: राइट नाउ सेंडिंग वारू फ्रॉम मिर्जापुर, सुन रहे हैं रेडियो 11.6.3 FM. जी बिंदास.

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: Denisha. Denisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Denisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par aur waqt ho chuka hai.
2: Ye hai chalti phirti dictionary.
1: So, आज का वर्ड काफी रिलेटेबल है विद द थिंग वी जस्ट स्पोक अबाउट. मैंने कुछ देर पहले बात करी थी ना कि चार महीने रह गए हैं साल में एंड एकदम से लोगों को हो रहा है कुछ कि भाई अब तो इट्स टू मच नाउ, आई नीड टू यू नो गेट माय लाइफ टुगेदर. एंड द वर्ड रिलेटेबल ऐसे है कि इट टेक्स करेज यू नो एंड इट टेक्स इनिशिएटिव एफर्ट्स टू गेट योर लाइफ टुगेदर व्हेन यू आर इवन थिंकिंग अबाउट इट एंड यू आर यू नो गेटिंग इनटू दैट प्रोसेस. करेज तो चाहिए होता है, ये तो बात पक्की है. ठीक है, एंड द वर्ड इज गम्शन, GUMPTION. गम्शन का मतलब होता है करेज, कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव. अ पर्सन हु डिसाइड्स समथिंग तो सिर्फ डिसाइड करके बैठ नहीं गए, दे आर गोइंग टू टेक एक्शन फॉर इट, दे आर गोइंग टू हैंडल इट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज. दैट इज गम्शन. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड गम्शन टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस बाई लीविंग अ जॉब. एंड यू नो ये गम्शन होना बहुत बड़ी बात होती है. सो इफ यू आर प्लानिंग कि भाई ये लास्ट के चार महीने में तो मुझे कुछ क्रेजी कर देना है, आई होप यू हैव द गम्शन एंड आई विश यू यू हैव ऑल द गम्शन टू डू दैट. यस, आई वांट यू टू डू दैट एंड फॉर मी एज वेल, सेम टू सेम. जी हाँ, स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

सुनिधि चौहान और शान की आवाज में बिंदास एकदम रेडियो ऑलिव की तरह. जी हाँ, एंड आई होप आप भी बिंदास ही हैं. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और अभी बस मैंने इंस्टाग्राम खोला ही था और जो मैंने पहला पोस्ट देखा, दिल जो खुश हुआ है ना मेरा. 18th of September को आ रहा है जाकिर खान का स्पेशल पापा यार ऑन नेटफ्लिक्स. एंड मैंने बहुत बातें सुनी हैं इसकी, लाइक जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, पीपल जिन्होंने अटेंड किया, दे वर टॉकिंग सो हाईली, एंड इट्स जाकिर खान. सो मैं कुछ ऐसे छोटा मोटा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ. इट इज़ गोना बी अमेजिंग, इट इज़ गोना बी इमोशनल, इट इज़ गोना बी फनी, इट इज़ गोना बी रिलेटेबल. आई एम श्योर अबाउट दैट. ऑल्सो इस स्पेशल में लास्ट में जाकिर खान के पापा ने परफॉर्म किया है. दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग यार. व्हाट अ थॉटफुल मैन ही इज. मतलब आई एब्सोल्युटली लव हिज ऑब्जर्वेशन, हिज आइडियोलॉजीज. He's amazing. So yeah, waiting for this one. And also I am waiting for you to go and follow us on social media if you haven't so far. ठीक है? RadioOlive.qa is the handle. Follow कर लो फटाफट से. Contest चल रहा है. Participate कर लो. जीत जाओगे कुछ कमाल का. और फिलहाल सुनो नीरज श्रीधर की आवाज में मेरा जीना है क्या मरना है क्या. Only on Radio Olive. जियो बिंदास मेरी जान.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: Tanisha.
1: Are we dedicating this track to Weekend? Because it is here. Aur dil to nahi lagta uske bina, hai na? You're listening to Radio All Women 6.3 FM. Tanisha, aapke saath bindas morning chal raha hai yahan par. 9:51 almost ho chuka hai clock mein. Aur waqt ho gaya mere jaane ka, meri jaan. Milte hai kal subah 6 baje. Yes, Weekend it is. So, zor shor se ekdam, you know, Weekend mein enter karenge. Badiya energy ke saath, positivity, enthusiasm. Aur ekdam aisa wala mindset ki bhai koi stress nahi लेंगे वीकेंड में, ठीक है? और फ्राइडे को तो हम मिल ही रहे हैं सुबह 9 से 11 बजे रियादा मेडिकल सेंटर में, जिन्होंने रजिस्टर किया है. यू विल गेट अ कन्फर्मेशन कॉल, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. आज या कल में आपको वो कॉल आ जाएगी. एंड सी यू गाइस देयर. बाकी फॉलो करते रहिए हमें रेडियो ऑलिव के सोशल मीडिया पेजेस पर. और आई होप यू गाइस हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

गुड मॉर्निंग. यस, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव और मैं हूँ आपके साथ लाइफ मस्त है लेकर मुस्कान. और अभी कौन सा सवाल पूछती हूँ आपसे. सो आज सुबह ना जब आप उठे तो कैसे उठे, अलार्म से पहले, अलार्म के बाद, या अलार्म ने 17 बार बजकर बोला कि भाई बात मान लो मेरी वरना लेट हो जाओगे. कुछ लोग ना सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, कुछ लोग चाय, और कुछ लोग बस सीलिंग को देखकर सोचते हैं कि आज बस उठना पड़ेगा, वीकेंड में अभी थोड़ा सा टाइम है. लेकिन एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो हम ना अपने दिल का मूड जो है वो अक्सर सुबह के पहले 30 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं. अगर मॉर्निंग ऑलरेडी भागती दौड़ती शुरू हो गई तो पूरा दिन भी वैसा ही जाता है. सो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये मैं अपने यू नो एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ. जैसे अगर मैं आधा घंटा भी लेट हुई ना तो मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है. ब्रेकफास्ट स्किप होता है तो फिर मूड ठीक नहीं रहता, और फिर सीधे लंच करने के टाइम पे मैं 1-2 बजे खाना खा पाती हूँ, और उस टाइम तक फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब लाइफ है. सो आज आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि आज कुछ अचीव करना ज़रूरी नहीं है, बस दिन को थोड़ा सा एंजॉय करना ज़रूरी है. चाय हो, कॉफ़ी हो, ट्रैफिक हो, ऑफिस हो, रेडियो ऑलिव के साथ आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम और आप मिलकर खूब सारी बातें करने वाले हैं. आज बहुत सारी बातें करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी अपडेट्स नहीं है मेरे पास आपके लिए, ना ही कोई ऐसी खबर है कि आपको लगे कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हाँ, लाइफ को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस नहीं कर सकते. सो आप मुझे फटाफट से व्हाट्सएप कीजिए 3311063 पर कि आज सुबह मेरी लाइफ का मूड कैसा था, सिर्फ एक वर्ड में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: आपके घर में कोई ऐसा काम है जो आप सोच जरूर रहे हो और पिछले 3 दिन से कर नहीं रहे हो? वार्डरोब अरेंज करना हो, या ईमेल का किसी रिप्लाई करना हो, कोई किताब पढ़ने के बारे में, या फिर जिम जाने के बारे में। और हम ना कहते हैं कि बस थोड़ी देर में करते हैं, कल करते हैं, ओके सुबह कर लेंगे, और वो थोड़ी देर कभी 3 हफ्ते बन जाता है, पता ही नहीं चलता। सो इंटरेस्टिंग अप्रोच पता है क्या है, काम को पूरा करने का टारगेट मत रखो, सिर्फ शुरू करने का टारगेट रखो। खुद से बोलो कि मुझे ये काम करना है, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करना है, बस 5 मिनट। बुक है तो ठीक है, 2-4 पेज पढ़ लेता हूँ। रूम है तो सिर्फ एक कॉर्नर को चलो आज साफ कर लेते हैं। एक्सरसाइज है तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलो आज वॉक ही कर लेते हैं, कुछ और नहीं तो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंट रिसर्च ऑन प्रोकेस्टिनेशन भी यही सजेस्ट करती है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ऑब्स्टेकल जो है वो इमेजिन करके उसके लिए पहले से एक एक्शन डिसाइड करना, मतलब मैं कल पढ़ूंगा नहीं, अगर रात को फोन उठाने का मन हुआ तो पहले 5 मिनट पढ़ूंगा। और सिंपल सी बात है, और ये जब आप करना स्टार्ट करते हो ना तो धीरे धीरे चीजें बेटर होने लगती हैं। सो आपका वो कौन सा काम है जिसे आप सिर्फ 5 मिनट देकर स्टार्ट कर सकते हो? वैसे कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपना रूम क्लीन करना होता है और मैं बस सोच रही होती हूँ कि आज रात को पक्का कर लूंगी, कल सुबह पक्का कर लूंगी, लेकिन 2-3 दिन निकल जाते हैं और सब कुछ बिखरा बिखरा सा रहता है। लेकिन जिस दिन स्टार्ट करती हूँ ना, अपने आप कुछ ही मिनटों में काम खत्म हो जाता है, एंड आई फील सो गुड। सो आप भी स्टार्ट करके देखिए, व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि आपका वो कौन सा काम है जो आप पिछले 3-4 दिन से सोच रहे हो कि यार आज पक्का कर लूंगा। कन्फेशन अलाउड है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

छोटी सी कहानी सोचिए। आप एक जगह खड़े हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है, हम कोई जॉब कर रहे होते हैं, किसी चीज़ में यू नो स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन फिर हमें समझ में आता है यार कुछ और चाहिए। आप दूसरी जगह जाने का प्लान बनाते हो, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, और काफ़ी दूर जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो उसकी बिगनिंग तो वही थी जहाँ से आप चले थे। ये आइडिया जो है

जिसका इम्पोर्टेंस आपको बहुत बाद में समझ आएगा. नाम नहीं बताना तो भी चलेगा, बट स्टोरी जो है वो बता सकते हो 3311063 पर. और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी लाइफ में ये ज़रूर होता है, किताब का एक चैप्टर आपको न जाने कितना कुछ सिखा के चला जाता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है

Story of the day. Story of the day. आपने अक्सर सुना होगा कि नारियल के पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। वजह ये कि इसका हर एक हिस्सा हमारे बहुत काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि

सिंपल सा फ्रूट किसी की जान भी बचा सकता है। पास्ट में जब कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं थे तब डॉक्टर्स ने आईवी ड्रिप की जगह डायरेक्टली फ्रेश कोकोनट वाटर यूज किया है एंड सरप्राइजिंग थिंग इज कि इट एक्चुअली वर्क्ड। एक सील्ड कोकोनट का पानी 100% स्टेराइल यानी बैक्टीरिया फ्री होता है। इसका सॉल्ट शुगर बैलेंस हमारे ब्लड से काफी मैच भी करता है जिससे हमारी बॉडी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि इसमें पोटेशियम हाई होता है यानी लॉन्ग टर्म तो नहीं लेकिन अर्जेंट सिचुएशंस के लिए ये एक बढ़िया लाइफ सेविंग हैक है। तो अगली बार जब आप नारियल खरीदें याद रखें कि आप नेचर का अल्टीमेट मेडिकल गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी कोकोनट डे।

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: सो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर पेरेंट्स. स्कूल खुलने का मतलब सिर्फ नई किताबें, नई यूनिफॉर्म या नए टाइम टेबल तो नहीं होता. हेल्थ और हाइजीन भी स्कूल रूटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो इसी को थोड़ा फन बनाने के लिए रियादा मेडिकल सेंटर और रेडियो ऑलिव आपके लिए लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब, जहां बच्चों के लिए ना हेल्थ और वेलनेस को बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं बल्कि फन गेम्स, एक्टिविटीज और लर्निंग के तरीके से समझाया जाता है. मुझे ऐसा लगता है बच्चे ना एक्चुअली बोरिंग लेक्चर को समझते भी नहीं है. आप घर में उन्हें कितनी बार कहते हो ये मत करो वो मत करो, पर ऐसा नहीं होता ना. वो सुनते हैं क्या? वो सुनते समझते तब हैं जब आप उन्हें कुछ करके दिखाते हो, कुछ एक्टिविटीज, कुछ यू नो फन गेम्स. तो दिस फोर्थ यानी कि 4th of September 2026 फ्राइडे को सुबह 9 बजे से रियादा मेडिकल सेंटर में होने वाला है. सो आई वॉज थिंकिंग कि किसी भी कंडीशन में ये मिस नहीं होना चाहिए. अगर बच्चे 7 से 10 साल के बीच में हैं तो फोकस रहेगा हेल्थ एंड वेलनेस पर. और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है. सो व्हाट्सएप पर टाइप कीजिए OR स्पेस आपके बच्चे का नाम और भेज दीजिए 3311063 पर. तो पेरेंट्स, स्कूल बैग रेडी हो रहा है लेकिन पेंसिल शार्प भी हो रही है, बट लिटिल चैम्प्स को हेल्थ सुपर हीरो बनाने की तैयारी बहुत ज़रूरी है. देखिए फटाफट से रजिस्टर कीजिए, इट्स वेरी सिंपल. आपको सिर्फ टाइप करना है OR स्पेस आपके बच्चे का नाम एंड सेंड इट टू 3311063. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

भाई अगर गूगल हमारी सर्च हिस्ट्री बोलना स्टार्ट कर देना तो दुनिया में बहुत सारे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे। मतलब आपको पता है गूगल पे लोग क्या क्या सर्च करते हैं, व्हाई एम आई टायर्ड आफ्टर स्लीपिंग 8 आवर्स, कैन आई ईट दिस आफ्टर मिडनाइट, और हाउ टू रिमूव टर्मरिक फ्रॉम वाइट क्लोथ्स, व्हाई इज माई फोन हीटिंग। मतलब ऐसे ऐसे सवाल लोग गूगल से पूछते हैं, और सबसे डेंजरस तो है इज दिस नॉर्मल। मतलब गूगल ने हमें इंफॉर्मेशन तो बहुत दी है लेकिन एक प्रॉब्लम भी दी है साथ में, कि हम हर छोटी चीज का आंसर तुरंत चाहते हैं। हमें लगता है कि बस गूगल पे डाला और मिल जाए। पहले ना हम किसी एक्सपीरियंस इंसान से पूछते थे, हमें लगता था कि उसको पता होगा। अब हम रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। लेकिन मुझे इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज लगती है, हम जो सर्च करते हैं वो हमारी क्यूरियोसिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। किसी को रेसिपी सर्च करनी होती है, किसी को ट्रैवल के बारे में, जबकि वो ट्रैवल कर भी नहीं रहा होता लेकिन उसके मन में ख्याल आया और ट्रैवलिंग गूगल पे स्टार्ट हो जाती है। किसी को रिलेशनशिप्स के बारे में, और किसी को बस जानना है कि क्या सच में मतलब ऐसा होता है जो हमने इंटरनेट पे या किसी रील में देखा। तो आज कन्फेशन टाइम है, आपकी सबसे अजीब गूगल सर्च क्या रही है? मतलब आपको लगता है कि यार ये कोई देख ना ले, फटाफट से डिलीट कर देते हैं। सो ऐसा कौन सा अजीब और फनी गूगल सर्च है जो आपने पिछले कुछ दिनों में किया है? अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं 3311063 पर। बाय द वे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा सर्च करना पसंद डिस्टेंस। मतलब जैसे ही मैं किसी की ट्रैवल व्लॉग्स देखती हूँ या कुछ रील देखती हूँ तो मुझे लगता है यार यहाँ से वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, बस यही सब चेक करती रहती हूँ मैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, 3311063 इज माई नंबर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ रेडियो 106.3 जियो बिंदास
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: So, आपको पता है हम बॉलीवुड की कुछ फेमस स्टोरीज को पहले बुक में पढ़ चुके होते हैं, मतलब अगर आप किताबें पढ़ते हो तो आपके लिए ये है। फॉर एग्जाम्पल थ्री इडियट्स फिल्म चेतन भगत की नॉवल जो थी 5.1 उससे ली गई थी। ऑल दो फिल्म में ओरिजिनल स्टोरी और कैरेक्टर्स में काफी चेंजेस किए थे। फिर आई टू स्टेट्स अगेन चेतन भगत की एक नॉवल से बेस थी। आर के नारायण की द गाइड से देवानंद की आइकॉनिक द फिल्म बनी थी गाइड, ठीक है। और विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर को इंडियन सेटिंग में लेकर काम किया था, मकबूल बनाई, ओमकारा, हैदर, ये सब किताबों से ही बने हैं। हैदर वाज फ्रॉम हेमलेट। ऐसे ही बहुत सारी किताबें हैं जो हम पढ़ चुके होते हैं और फिर बाद में उसकी मूवी आती है। मतलब कहानियां ये नहीं देखती कि यार ये किताब किसने लिखी थी, कौन सी कंट्री का ऑथर है। एक राइटर ने सेंचुरीज पहले कुछ लिखा और फिर यू नो दशकों बाद मुंबई में उसकी एक नई दुनिया बन गई। अब सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके हिसाब से किताब बेटर होती है या मूवी? और हाँ, अगर आपने पहले बुक पढ़ी होती है और फिर मूवी आती है तो क्या आप उसे देखते हो? सो आप मुझे बताइए 3311063 पर। तो यू नो आपको पता होता है मूवी में ये सीन था ही नहीं, मतलब बुक में कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो मूवी में नहीं दिखाई जाती। कई बार किताब में नहीं होता लेकिन मूवी में उसे अजीब सा बना देते हैं। सो बहुत चेंजेस होते हैं जब किताब से आप मूवी पर आते हो तो। पर आई फील कि यार दोनों का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। मूवी 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाती है और आप फ्री हो जाते हो, लेकिन किताब जब हम स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 10-15 दिन, महीना तो लग ही जाता है ख़त्म करने में। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान। बताइएगा ज़रूर, नंबर है 3311063। Stay tuned, Jio, Bindas.
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.

कभी नोटिस किया है, आप मार्केट से एक ब्यूटीफुल टेबल खरीद कर लाओ, नाइस, लेकिन अगर वही टेबल आपने खुद मतलब स्क्रू ड्राइवर लेकर 3 घंटे में बनाई हो और वो थोड़ी यू नो टेढ़ी बन गई हो, तो फिर आप बोलोगे एक्चुअली ये हैंडमेड लुक है। इसके पीछे एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजी फिनोमिनन है। सो बेसिकली आईकिया इफेक्ट इसे कहते हैं। रिसर्च ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब लोग खुद आईकिया बॉक्सेस असेंबल करते हैं या कोई भी यू नो फर्नीचर मंगवाते हैं किसी ऑनलाइन जगह से और फिर उसको असेंबल करते हैं, सो इसे ओरिगामी बनाते हैं या फिर लेगो सेट बनाते हैं, तो सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद वो अपनी बनाई चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और ये तो मैंने भी देखा यार, हम कई बार ऐसे ना, मैंने कुछ दिन पहले एक्चुअली एक पेपर मंगवाया था जिसमें सब कुछ बना हुआ था, सिर्फ आपको कलर्स फिल करने थे, एंड वो कलर्स आप अपने हिसाब से अपने पसंद से कर सकते हो, और मुझे वो एकदम ऐसे पर्सनलाइज लग रहा था जबकि सब कुछ उसमें बना हुआ था। और ये सिर्फ फर्नीचर के साथ नहीं होता, आपका खुद का बनाया केक है, खुद आपने डेकोरेट किया हुआ कोई रूम है, खुद का लिखा हुआ कोई कार्ड है, बच्चे का हैंडमेड ड्रॉइंग है, या उसकी मार्केट वैल्यू जीरो हो सकती है, इमोशनल वैल्यू एकदम प्राइसलेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमारा एफर्ट होता है। तो शायद इसीलिए लाइफ में कुछ रिलेशनशिप और ड्रीम्स भी हमें ज्यादा प्रीशियस लगते हैं, क्योंकि हमने उसमें ना अपना टाइम दिया होता है, अपने एफर्ट्स लगाए होते हैं। सो यू टेल मी, आपको ऐसे DIY चीजें पसंद है, या आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो परफेक्ट नहीं है बट क्योंकि आपने उसे बनाया है या आपके किसी लव्ड वन ने उसको बनाया है इसीलिए वो बहुत स्पेशल है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। मैं हूं मुस्कान। स्टे ट्यून्ड। जियो। बिंदास।

0: पे रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे
1: आपने अक्सर सुना होगा कि नारियल के पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। वजह ये कि इसका हर एक हिस्सा हमारे बहुत काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिंपल सा फ्रूट किसी की जान भी बचा सकता है? पास्ट में जब कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं थे, तब डॉक्टर्स ने आईवी ड्रिप की जगह डायरेक्टली फ्रेश कोकोनट वाटर यूज किया है। एंड सरप्राइजिंग थिंग इज कि इट एक्चुअली वर्क्ड। एक सील्ड कोकोनट का पानी 100% स्टेराइल यानी बैक्टीरिया फ्री होता है। इसका सॉल्ट शुगर बैलेंस हमारे ब्लड से काफी मैच भी करता है, जिससे हमारी बॉडी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि इसमें पोटेशियम हाई होता है, यानी लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन अर्जेंट सिचुएशंस के लिए ये एक बढ़िया लाइफ सेविंग हैक है। तो अगली बार जब आप नारियल खरीदें, याद रखें कि आप नेचर का अल्टीमेट मेडिकल गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी कोकोनट।

एक किताब है जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया है, द लिटिल प्रिंस, राइट? अगर आपने किताब पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बताती हूँ। 1943 में एक जगह की छोटी सी बुक पब्लिश हुई थी, बाहर से देखो तो ऐसा लगता था बच्चों की स्टोरी है क्योंकि नाम भी वैसा ही था द लिटिल प्रिंस, कवर भी वैसा ही है, लेकिन अंदर जाओ तो ये अडल्ट्स की दुनिया पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है। हम बड़े होते होते नंबर्स पर पहुंच जाते हैं, नंबर से शुरू करते हैं एक्चुअली, कमाते कितना हो, यू नो, कितना बड़ा घर है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, कितनी सैलरी है, कितनी गाड़ियां अभी तक आपने खरीद ली और कौन सी गाड़ी खरीदी, बच्चे पूछने लगते हैं और मतलब ऐसा लगता है कि आप खुश हो कि नहीं ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और जब जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपकी एज भी लोग पूछने लग जाते हैं, मतलब एवरीथिंग इज नंबर। सो हमने लाइफ को मेजर करने के लिए बहुत सारे नंबर्स बना दिए हैं, लेकिन हैप्पीनेस को कोई मीटर नहीं फॉलो करता, मतलब दोस्ती का कोई स्कोर नहीं है, पीस का कोई बैंक बैलेंस नहीं है। और शायद इसीलिए ना कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी हमें लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है, वो मिसिंग क्या है, यही मिसिंग है भाई कि हम पूछते ही नहीं है कि इन सब चीज़ों की क्या वैल्यू है। सो आज का थोड़ा सा सीरियस सवाल है मेरा आपसे कि अगर दुनिया आपसे आपकी सैलरी, एज और अचीवमेंट पूछना बंद कर दे तो आप अपने बारे में सबसे पहले क्या बताना चाहोगे? About it. And मुझे WhatsApp जरूर करना 3311063 पर, क्योंकि ये सवाल इतना अच्छा सवाल है कि जब मुझसे किसी ने पूछा तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो मतलब बताने वाली चीज़ है कि हम अपनी लाइफ के बारे में फिर क्या बताएंगे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
2: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
2: द वेट इज फाइनली ओवर बी रेडी टू शॉप
4: हेलो नमस्कार मम्मी मिया मैं हूं चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑल

0: अपना वार्डरोब खोलते हो, कपड़े, फिर दूसरा कबर्ड खोलते हो और कपड़े, चेयर पर कपड़े, बेड पर कपड़े, और फिर मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है ये भी बोलते हो। ये डायलॉग ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। लेकिन इसके पीछे ना एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, चॉइस ओवरलोड। जब ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डिसीजन लेना कभी कभी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जितनी कम चॉइसेस होती हैं उतना आसान है आपको कपड़े सेलेक्ट करना। इसीलिए कुछ सक्सेसफुल लोग जो है वो अपने डेली चॉइसेस ना इंटेंशनली बहुत सिंपल रखते हैं। यार मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि स्टीव जॉब्स हो गए या मार्क जुकरबर्ग हो गया, वो ना अपनी एक ही सिंपल सी टर्टल नेक वाली टी शर्ट्स खरीदते हैं, सिंपल ग्रे ब्लैक, और फिर उसी को हमेशा पूरे महीने चलाते हैं। सो पॉइंट फैशन नहीं था, अननेसेसरी डिसीजन कम करना था। मतलब सोचो हम रोज कितने डिसीजंस लेते हैं पहनने के बारे में, खाने के बारे में, वर्कआउट करने के बारे में, नेटफ्लिक्स और ओटीटी पर क्या देखना है, कौन सा मैसेज का रिप्लाई करना है, और दिन खत्म होते ही दिमाग बोलता है कि बस अब नेटफ्लिक्स पे जो पहला दिखेगा वही देख लेंगे भाई, जो मतलब सबसे ऊपर आ रहा होगा ना टॉप 10 में वो देख लेंगे। सो एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आज अपने ऑप्शंस थोड़े कम करके देखिए। अगर आपको ऐसा मन करता है ना बार बार शॉपिंग करने का, तो थोड़ा सा खुद को रोकिए। आई नो वीकेंड आने वाला है और फिर से आप कुछ ऐसे ही प्लान कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि यार ये सिर्फ सेविंग की बात नहीं है, ये ओवरलोड होने की बात है। सो मुझे बताइए कि आपके लिए सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या है, क्या पहना जाए, क्या खाया जाए या क्या देखा जाए। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। पहले ना मेरे पास बहुत सारे हैंड बैग्स हुआ करते थे, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ऑफ वाइट, पिंक। मुझे ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था, मुझे लगता था आज कौन सा बैग उठाया जाए। लेकिन फिर मैंने एक काम किया कि मैंने एक कॉमन ब्राउन से कलर का एक बैग रख लिया अपने पास और सोचा कि ये तो सब पे चला जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वो जो कन्फ्यूजन हुआ करता था, बैग चेंज करने वाला टाइम हुआ करता था, सब खत्म हो गया और अब लाइफ थोड़ी सॉर्टेड है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। मैं हूँ मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

यार जब भी वर्क वीक स्टार्ट होता है ना, जैसे यहाँ कतर में संडे को होता है, तो हम एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं कि अब डेली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज. और इस बार तो वर्क वीक के साथ नया महीना भी स्टार्ट हुआ था, सो डेली एक्सरसाइज करेंगे, एक किताब पढ़ेंगे, कुछ हेल्दी खाना खाएंगे, फ़ोन कम चलाएंगे, और वेंसडे आते आते तक ओल्ड वर्जन लोडिंग हो जाता है. लेकिन आज वेंसडे है तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात की जाए. अब देखो कल आ रहा है थर्सडे, हम वेट कर रहे हैं कि बस कल का दिन आए और हम फ्री हो जाएं. लेकिन आदत बनाने का एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, चेंज को इतना छोटा रखो कि ब्रेन को मतलब रेजिस्टेंस ही ना हो, पता ही ना चले. किताब पढ़नी है 50 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 पेज पढ़ लो यार. एक्सरसाइज करनी है 1 घंटा वर्कआउट मत करो, पर धीरे धीरे ऑफिस में 5-10 मिनट वर्कआउट करना, मतलब वर्कआउट नहीं वॉक करना स्टार्ट कर दो. जैसे लंच के बाद कोई वॉक करने चले गए या फिर चाय पीने के बहाने यू नो बाहर निकल गए. रूम क्लीन करना है तो पूरा घर नहीं, एक ड्रॉअर क्लीन कर लो, एक वार्डरोब क्लीन कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग इज ऑफन हार्डर देन कंटिन्यूइंग. सो आई विल से एक रिसेंट रिसर्च जो मैंने पढ़ी थी, बहुत ही भारी रिसर्च थी, उसमें बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए थे, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि ये सपोर्ट करता है. बेसिकली कहता है कि मैं करूँगा ये सोचना नहीं है, बल्कि ऑब्स्टेकल और उसका प्लान पहले से सोचना है. सो आज एक छोटा सा प्रॉमिस है कि कोई बड़ा रिजोल्यूशन नहीं लीजिए, बस एक टाइनी हैबिट यू नो. और मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कि आज से मैं सिर्फ ये करने वाला हूँ, भले ही वो 5 मिनट की वॉक क्यों ना हो, या फिर कोई हेल्दी खाना खाने की बात क्यों ना हो, अपने खाने में प्रोटीन या कार्ब्स ऐड करने की बात क्यों ना हो, कुछ भी हो तो जरूर बताइए कि हाँ आज से मैंने ये चेंज किया अपनी लाइफ में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम है लाइफ मस्त है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, बिंदास.

है, यानी लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन अर्जेंट सिचुएशंस के लिए ये एक बढ़िया लाइफ सेविंग हैक है। तो अगली बार जब आप नारियल खरीदें, याद रखें कि आप नेचर का अल्टीमेट मेडिकल गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी कोकोनट।

0: सुनो
1: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: सो दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. लेकिन आज का लास्ट थॉट थोड़ा सा दिल के लिए. हमारी दुनिया में हमें कॉन्स्टेंटली ये बोलती है कि और बेटर करो, बेटर जॉब करो, बेटर घर खरीदो, अच्छी फिजिक बनाओ, बेटर फोन खरीद दो. बाय द वे इस महीने एप्पल का 18th भी आ रहा है और फोल्डेबल फोन भी आ रहा है, याद आया मुझे. बेटर हॉलीडे प्लान करो, बेटर लाइफ स्टाइल प्लान करो. और इम्प्रूवमेंट बुरी चीज़ नहीं है, मतलब ग्रो करना चाहिए, सपने देखना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट पर रुक कर ये भी पूछना चाहिए जो मेरे पास है क्या उसमें उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते हम, क्योंकि कंपैरिजन का गेम कभी ख़त्म होने ही नहीं वाला. आप कितनी भी यू नो सैलरी पर हो जाओ, आपको उससे ऊपर वाले लोग दिखेंगे. अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यू नो किसी छोटी सी जगह पर घूमने गए हो, मान लो आप गोवा घूमने गए हो इंडिया में, तो आपको लगेगा यार मालदीव्स जाना था, ठीक है. इसीलिए मतलब अगर आप मालदीव्स गए हो तो आपको लगेगा यार स्विट्ज़रलैंड जाना था. फिर हम सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ कब अच्छी होगी. मे बी लाइफ अच्छी हो रही होती है और हम उसे नोटिस ही नहीं करते, हम भूल जाते हैं. सो टुडेज फाइनल व्हाट्सएप क्वेश्चन इज कि आपकी लाइफ में वो एक चीज क्या है जिसके लिए आप जेन्युइनली बोल सकते हो कि हाँ ये मेरे लिए इनफ है. मुझे आंसर भेजना जरूर, और मुझे भी देखना है कि कितने लोग बोलते हैं कि हाँ दिस इज इनफ फॉर मी, बिकॉज सम टाइम मोर से ज्यादा ब्यूटीफुल वर्ड होता है इनफ. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. कल सेम टाइम सेम जगह पर सुबह वीकेंड वाली वाइब लेकर हाजिर रहूंगी. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.
1: रेडियो

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा।

0: सुबह शाम बस यही टेंशन बच्चों को लेक्चर नहीं हम देंगे फुल ऑन फन बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
2: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine, 5x more clean.

106.3 FM, Gio Bendaz. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ। ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे हम एक साथ बैठकर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, मुझे बताइए क्या हाल है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझे किसी ने बोला कि यार जरा हॉटस्पॉट देना। तो मैंने जब हॉटस्पॉट दिया तो मुझे मन में एक सवाल आया कि ये हॉटस्पॉट कब से शुरू हुआ होगा, कैसे शुरू हुआ होगा, ये इसके एवोल्यूशन की कहानी क्या है करके। तो हमने छानबीन की और कुछ चीजें हमारे हाथ में लगी हैं। तो बहुत पहले वाईफाई हॉटस्पॉट के पहले टेथरिंग करके एक चीज होती थी, यानी कि फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते थे यूएसबी केबल्स या ब्लूटूथ यूज करके, ठीक है। इस प्रोसेस को टेथरिंग बोलते थे। ये काफी स्लो था और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर सेटअप की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद जो मेजर इनोवेशन आया वो आया 3G कनेक्शन के आने के बाद। जब से स्मार्टफोन्स जो है 3G डेटा नेटवर्क से यूज करने लायक हो गए, उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई चिप्स थे। वो एक ऐसा हार्डवेयर पीस है जो वायरलेस सिग्नल्स को सेंड करना और रिसीव करना दोनों जानता। और एंड्रॉइड ने सबसे पहले जो है वाईफाई को लॉन्च किया और 2010 में। उसके बाद आईफोन ने 2011 में बिल्कुल वाईफाई को लॉन्च किया पर्सनल हॉटस्पॉट के नाम से। अब एक्चुअली ये काम कैसे करता है उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आप यहीं पे बने रहिए, जुड़े रहिए, गाने सुनते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात करते हैं हॉटस्पॉट के बारे में। तो मैंने बताया कि हॉटस्पॉट कैसे शुरू हुआ, 3G कनेक्शन के आने के बाद कैसे जो है इनोवेशन आए। अब हम बात करते हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एक फोन जिसे इंटरनेट मिलता है 4G या 5G कनेक्शन से, ठीक है, वो एक राउटर की तरह काम करता है, क्योंकि उस फोन का जो इंटरनल वाईफाई चिप है वो सिग्नल रिसीव भी कर सकता है, साथ ही साथ एक राउटर की तरह सिग्नल को बीकन भी कर सकता है। और जब इसका सॉफ्टवेयर भी इसके साथ अलाइंड हो, क्योंकि 2010 के टाइम तक एंड्रॉयड फोन्स में जो है सॉफ्टवेयर भी उन्होंने अपडेट कर दिया था। जैसे कि हम अगर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो ड्राइवर्स बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं, वैसे ही फोन ने भी जब सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया तो इजिली फोन जो है एक राउटर की तरह काम करने लगा, क्योंकि ऑलरेडी उसे मिल तो रहा था, इंटरनेट तो मिल ही रहा है, एंड इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ सेंडिंग दो सिग्नल्स ऑल्सो। तो यही है कहानी हॉटस्पॉट की, और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हैं कि ये सिंपल सा फ्रूट किसी की जान भी बचा सकता है। पास्ट में जब कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं थे तब डॉक्टर्स ने आईवी ड्रिप की जगह डायरेक्टली फ्रेश कोकोनट वाटर यूज किया है एंड सरप्राइजिंग थिंग इज कि इट एक्चुअली वर्क्ड। एक सील्ड कोकोनट का पानी 100% स्टेराइल यानी बैक्टीरिया फ्री होता है। इसका सॉल्ट शुगर बैलेंस हमारे ब्लड से काफी मैच भी करता है जिससे हमारी बॉडी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि इसमें पोटेशियम हाई होता है यानी लॉन्ग टर्म तो नहीं लेकिन अर्जेंट सिचुएशंस के लिए ये एक बढ़िया लाइफ सेविंग हैक है। तो अगली बार जब आप नारियल खरीदें याद रखें कि आप नेचर का अल्टीमेट मेडिकल गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी कोकोनट डे।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे बहुत खुश हूं मैं आज, क्योंकि आज है वर्ल्ड कोकोनट डे और मैं केरला से हूं, तो मेरे लाइफ में कोकोनट के बिना एक दिन सोच पाना बहुत मुश्किल है। घर में जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ तो कोकोनट का कहीं ना कहीं से कोई इन्फ्लुएंस तो होता है। या तो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, या कोकोनट वाटर पीते हैं, या फिर कोकोनट का जो मीट होता है उसे हम यूज़ करते हैं खाने में। कुछ ना कुछ करने के लिए कोकोनट के बिना हमारे लाइफ में एक दिन सोच पाना इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे कतर में मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ ऑयल पुलिंग के लिए, तो हाँ कोकोनट इज़ देयर इन माई लाइफ। मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में सबसे कॉन्स्टेंट अगर कुछ रहा है वो कोकोनट रहा है, नारियल के अलावा कुछ इतना कॉन्स्टेंट नहीं रहा है। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कोकोनट के बारे में, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहली बात, हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है क्योंकि रिच फाइबर कंटेंट होने के कारण ही हमारे बॉवल को बहुत ही हेल्थी रखता है, एक हेल्थी गट को प्रमोट करता है, एनर्जी बूस्ट करता है। कोकोनट में जो है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एक ऐसा टाइप ऑफ फैट है जो बॉडी में एनर्जी को बहुत ही जल्दी प्रमोट करता है या फिर बहुत जल्दी हमें एनर्जी देता है। हाइड्रेशन में एड करता है, टेंडर कोकोनट वाटर जो है उसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि पोटेशियम मैग्नीशियम, जो हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छे से रिहाइड्रेट करते हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड होता है जो एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी वाला एक एलिमेंट है, जिसके कारण बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी हमारी रहती है। एंड लास्ट में हमारे बोन हेल्थ को ये बहुत प्रमोट करता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ मैंगनीज, जिससे हमारे बोन फॉर्मेशन और मेटाबॉलिक हेल्थ में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और यही बात बताते हुए आज नारियल का दिन है, तो हो सके तो नारियल पानी पीना मत भूलिएगा। इट्स सच अ क्लीशे लाइन बट या कोकोनट माइट सीम टू बी अ सिंपल थिंग बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
2: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपरहीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
5: Hi guys, this is Abhar Shetty Khurana and you are listening to Radio Olive.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है बताना चाहूंगा। बात यह है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने बच्चों को रियादा के जूनियर केयर क्लब के लिए, एक बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब, जहां पे बच्चे स्कूल खुलने से पहले एंजॉय करेंगे, फन करेंगे, उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए आपको हमें मैसेज करना है, OR स्पेस अपने बच्चे का नाम भेज दीजिए 3311063 पर और रजिस्टर कीजिए। सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को एक कॉल बैक जाएगा, एक इन्वाइट आएगा। सेप्टेम्बर 4th को रियादा मेडिकल सेंटर में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है आप इस बहुत ही बढ़िया बैक टू स्कूल इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम जरा बात करते हैं कैसे हम अपने वर्क प्लेस को और फन बना सकते हैं, जहां पे हमें काफी मजा आए, काम करने में मजा आए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम अपने लाइफ का बहुत ही बड़ा एक हिस्सा जो है हम अपने वर्क प्लेस में बिताते हैं, और इसलिए वर्क प्लेस को फन लविंग बनाना, काफी बढ़िया बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ये बात लेकर। तो कुछ कुछ छोटे छोटे रास्ते हैं। सबसे पहले तो भाई फ्रस्ट्रेशंस एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है। एवरीडे फ्रस्ट्रेशन को अगर हम रिमूव करते हैं और स्मॉल स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन एंड प्ले अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो हमारे वर्क प्लेस में थोड़ा अच्छा वाइब बन जाएगा। तो कैसे कैसे फ्रस्ट्रेशन को हमें एलिमिनेट करना चाहिए, जो स्लो प्रोसेस हैं, जो टीडियस ब्रोकन वर्क फ्लोज हैं, जो हमारे एनर्जी को ड्रेन करते हैं, सबसे पहले उसे निकालना चाहिए। उसके बाद नेगेटिविटी, यानी कि जो कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं या डिफिकल्ट एटीट्यूड्स हैं, जो प्रॉब्लम टीम फेस कर रही है उसको एड्रेस करना चाहिए, ताकि क्योंकि देखो भाई टीम लगातार वहीं पे काम कर रही है, उस एनवायरनमेंट में काम कर रही है, तो टीम का इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और माइक्रो मैनेजमेंट अगर है तो उसको कम्प्लीटली डिलीट कर देना चाहिए। उसके बजाय माइक्रो मोमेंट्स ऑफ जॉय ऐड करना चाहिए, थोड़े क्विक गेम्स खेलना या फिर हल्के मीटिंग्स, लाइटर मीटिंग्स, स्मॉल मीटिंग्स जो जल्दी शुरू होते हैं, जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। और कम्युनिटी और कल्चर को बिल्ड करने लायक चीज़ें करना, माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस को और फन बनाने के लिए। मगर एक और तरीका है, वो क्या है जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हम आते हैं ये बात बताने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, जियो बिंदास।

0: आज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात कर रहे थे अपने वर्क प्लेस को फन बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया चीज कर सकते हैं वो है रेडियो ऑलिव के टीम को अब अपने ऑफिस में इनवाइट कर सकते हैं ताकि हम वहां पे आके बिल्कुल मस्ती करें, धमाल करें, फन करें, आपके एम्प्लॉयज को रिचार्ज और रीएनर्जाइज कर दें। मैं बात कर रहा हूं हैप्पीनेस लॉन्च की, जहां पे रेडियो ऑलिव की टीम जो है आपके ऑफिस को विजिट करेगी और आपके वर्कर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगी, जहां पे हम फन गेम्स खेलेंगे, बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे और काफी अच्छा एक माहौल होगा जहां पे हम भी खुश, आप भी खुश और हम दोनों खुश तो हम सब खुश। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं, मगर जाने से पहले आपको रजिस्टर कैसे करना है वो भी बता देते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज करना है हमें 3311063 पर, HL स्पेस आपकी कंपनी का नाम, आपको हमें मैसेज करना है, हमारे टीम से कोई आपको बुलाएगा, बात करेगा, बाकी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करेगा। तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: राहुल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
3: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे आज हम एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में बात करने वाले हैं सुपर ग्लू के बारे में। तो साल है 1942 और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू जो है जोरों शोरों से चल रहा था, और एक इन्वेंटर हैरी कूवर और उनकी टीम जो है वो एलाइड सोल्जर्स के लिए एक क्लियर प्लास्टिक गन साइट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। मगर बनाते बनाते बनाते एक्चुअली उन्होंने एक सियानो एक्रिलेट फॉर्मुलेशन बना दिया जो काफ़ी स्टिकी था, और जिस भी चीज़ को छूता था उससे चिपक जाता था। तो उस टाइम पे उन्होंने इसे अबैंडन कर दिया। मगर बहुत सालों बाद उन्होंने सोचा कि यार ये चीज़ एक्चुअली हम ग्लू की तरह यूज़ कर सकते हैं चिपकाने के लिए। तो कुछ और बनाने की कोशिश में कुछ और ही बन गया, जो मुझे लगता है कि आजकल हम सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है, और यही है सुपर ग्लू की कहानी। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 4th सितंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बहुत ही बढ़िया एक बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब जो है रियादा मेडिकल सेंटर में होने वाला है, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने बच्चों को। रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज भेजना है 3311063 पर OR स्पेस अपने बच्चे का नाम और आप हमें मैसेज कर दीजिए। सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को जो है कॉल बैक जाएगा और वो हिस्सा बन सकते हैं रियादा मेडिकल सेंटर के बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब का। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

Olive B. Story of the day. Story of the day. आपने अक्सर सुना होगा कि नारियल के पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। वजह ये कि इसका हर एक हिस्सा हमारे बहुत काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिंपल सा फ्रूट किसी की जान भी बचा सकता है? पास्ट में जब कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं थे, तब डॉक्टर्स ने आईवी ड्रिप की जगह डायरेक्टली फ्रेश कोकोनट वाटर यूज किया है। एंड सरप्राइजिंग थिंग इज कि इट एक्चुअली वर्क्ड। एक सील्ड कोकोनट का पानी 100% स्टेराइल यानी बैक्टीरिया फ्री होता है। इसका सॉल्ट शुगर बैलेंस हमारे ब्लड से काफी मैच भी करता है, जिससे हमारी बॉडी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि इसमें पोटेशियम हाई होता है, यानी लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन अर्जेंट सिचुएशंस के लिए ये एक बढ़िया लाइफ सेविंग हैक है। तो अगली बार जब आप नारियल खरीदें, याद रखें कि आप नेचर का अल्टीमेट मेडिकल गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी कोकोनट डे।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को?
3: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
2: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
3: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
2: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
2: Brought to you by Riyadha Medical Center.
4: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
5: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
2: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पांडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है, इसलिए जबरदस्त इवनिंग्स के लिए तैयार हो जाइए। और जाते जाते जाते आपको यही याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। रेडियो

Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: जिस हिसाब से मौसम हो रहा है, भीगे भीगे भीगे वाली तो फीलिंग आ रही है, लेकिन बारिश में भीगे वाली फीलिंग आ रही है।
1: वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिफर, मैं हूँ आपकी कसुजन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब बारिश में भीगने वाली फीलिंग क्यों आ रही है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखो पसीना तो बराबर से आ रहा है ना, एंड बाहर जो लाइटिंग हो रखी है इस वक्त यानी आसमान का कलर है वो थोड़ा सा डिम सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यार मौसम बहुत अच्छा हो, लेकिन मोमेंट जब आप खिड़की से बाहर अपना हाथ निकालते हो या खुद निकलते हो या आप अपनी बिल्डिंग के बाहर कदम बढ़ाते हो, गाड़ी से कदम बाहर बढ़ाते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं नहीं ये सब तो छल है, ये सब तो धोखा है, मौसम जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली पिछले कुछ दिनों में यानी एक दो दिनों में जो है अभी ठंडक थोड़ी सी, ठंडक तो नहीं बढ़ी है मतलब ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी कम हुई है, जिसके बाद थोड़ा सा अच्छी अच्छी सी फीलिंग जो है वो आनी शुरू हो गई है। वैसे मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, एंड मैं ना आज आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो है 2nd September हो गया है, मैंने ना न्यू ईयर पे बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए थे, एक रेजोल्यूशन था कि मैं फिट हो जाऊंगी, एक रेजोल्यूशन था कि मैं हेल्दी खाऊंगी, सेविंग करूंगी एंड अपने फैशन पे थोड़ा सा ध्यान दूंगी। बाकी कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, फैशन पे मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इंटरनेट से गलत डिक्शनरी डाउनलोड कर ली है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में मिनिमल वर्ड है ही नहीं, मैं सिर्फ मैक्सिमम चीज़ें कर रही हूँ, मैक्सिमलिस्ट हो गई हूँ मैं। मतलब अचानक से आज मैं इतना बड़ा वाला गले में चोकर पहन के आई हूँ, नेकलेस पहन के आई हूँ एंड मेरे ऑफिस में सब लोगों ने मुझे बोला है कि ये क्या पहन लिया, ये क्यों पहन लिया, लड़के तो सच में अलग लेवल पे जाके मतलब हो गए कि ये क्यों पहना है आपने, ये तो साड़ी के साथ भी नहीं पहना जाता, आपने ब्लेजर और जीन्स के साथ क्यों पहना है। लेकिन फैशन अपनी जगह है, मैं उनको एटीट्यूड में आंसर दे रही हूँ कि देखो आपको फैशन की नॉलेज नहीं है मत बोलो मुझे, लेकिन अंदर मेरा कॉन्फिडेंस जो है दिल के अंदर हिल चुका है। तो आप जो है जल्दी से मेरे सोशल मीडिया पर जाइए एंड वहाँ जाके मुझे बताइए कि मेरा आज का आउटफिट जो है वो कैसा लग रहा है। फिलहाल आपके लिए अमेजिंग वाले गाने जो है उसका पूरा से प्लेलिस्ट बना के मैं ला चुकी हूँ, अमेजिंग गाने आपको सुनाने वाली हूँ, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास। फिलहाल राघव जुआल का डांस करते हुए अमेजिंग वाला गाना आंखों से तूने, इसे एंजॉय कीजिए, मैं हूँ आपकी कशिश, मिलते हैं थोड़ी सी देर में, जियो बिंदास।

0: Check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:12 दैट इज 5:12 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों
3: अपने हाला नंबर पर पाइए और ईडू का योर स्पेशल ऑफर
2: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
3: अपना ऑफर चेक कीजिए और ईडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले
2: एक्सपीरियंस मोर विद ओइडो
4: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है कैसे समझाऊं इस लड़के को
5: सुबह शाम बस यही टेंशन बच्चों को लेक्चर नहीं हम देंगे फुल ऑन फन बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब
4: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से
5: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
4: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज
5: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर
4: Brought to you by Riyadha Medical Center.
6: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
7: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
4: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: अब देखिए ये जो सवाल पूछ रहे हैं उदित नारायण जी, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली बहाने जो हैं वो तो अब हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है। आते जाते उठते बैठते खाते पीते हम सिर्फ बहाने ही तो लगाते हैं कि कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे दे तो एक बहाना हमारा रेडी रहता है कि आज मेरे बाल अच्छे लग रहे, अरे आज तो क्या हुआ ना कि मैं शैम्पू करने में लेट हो गई तो ना अभी शैम्पू गया है इसीलिए अच्छे लग रहे होंगे। कॉम्प्लीमेंट लेने भी नहीं आते हमें यार। मुझे लगता है कि स्कूल में जो है हमें बाकी सारी एक्टिविटीज़ के साथ एक ये भी बच्चों को ट्रेन करना चाहिए इस चीज़ के लिए भी कि कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से हैंडल करें, वरना हम तो भाई हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे हम तो ऐसे मतलब बिखर ही जाते हैं। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूं, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने इन कंधों पर उठा रखी है। अब थोड़ी देर पहले हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि यार किस तरीके से पिछले दो दिनों से थोड़ी सी गर्मी जो है वो कम महसूस हो रही है, लेकिन सिर्फ गर्मी कम महसूस नहीं हो रही, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है एंड हवा के साथ साथ जो डस्ट उड़ रही है वो भी जो है कमाल की उड़ रही है। 37 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर दोहा में हो रहा है, ये मुझे मेरा फोन बता रहा है, एंड 42 डिग्री सेल्सियस आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है एंड लोएस्ट टेम्परेचर आज का 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सनसेट जो है वो 5:52 पर होगा, तो एज यूजुअल जैसे हम हर रोज़ कर रहे हैं आजकल सन जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो फोटो जो है वो बहुत अमेजिंग आएगी सुर्ख से आसमान की। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए अगर आप सिग्नल पे खड़े हुए हैं या कहीं रुके हुए हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर रहे हैं तो एक फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। क्या है ना कि मैं अपने फ़ोन का वॉलपेपर बदलना चाहती हूँ और आपकी एस्थेटिक फ़ोटोज़ के साथ वो पॉसिबल हो पाएगा, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए एंड फ़ोटो खींचिए 3311063 पर, मुझे अमेजिंग सी एस्थेटिक सी फ़ोटो भेज दीजिए एंड उन जबरदस्त फोटोज के साथ एक जबरदस्त हिट गाना जो है बैकग्राउंड में मैं चला दूंगी। सो अमेजिंग वाली फोटोज आप मुझे भेजिए, अमेजिंग वाला गाना मैं आपको सुना दूंगी। सो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए जबरदस्त हिट गाना कैरेक्टर रिलाई 2.0 शहजादा मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर। सो जरा एंजॉय करो एंड कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
4: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
5: Grow with Maserati, freshly from Qatar.
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
9: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

अच्छा, और रैंडमली किसी को भी स्टूडियो में आने की जो ना ऐसे इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर कोई आ जाता तो वो तो डर जाता मुझे ऐसे डांस करते हुए देख के। अच्छे गाने पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ले आते हैं हम। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। लेकिन आपने मुझे खुश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उसका क्या, क्योंकि आप लोग इतनी अमेजिंग एस्थेटिक पिक्चर्स मुझे भेज रहे हो कि मैं क्या ही बोलूँ यार। मेरी आंखों से तो कई बार आंसू से आ जाते हैं, छलक से जाती है मेरी आंखें। सो देख लेते हैं कि किस किस ने हमें फोटो भेजी है। सो सबसे पहले तो मुझे एक बहुत ही क्यूट सी फोटो जो है वो दिख रही है, जिसमें उससे पहले उन्होंने अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू सिस लिखा है, एंड इन्होंने जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी फोटो भेजी है, एंड उन्होंने लिखा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई सेंड यू अ पिक्चर बिकॉज येस्टरडे आई केम बैक फ्रॉम पाकिस्तान एंड आफ्टर मोर देन 3 months। ओके, सो आपका भी यू नो बैक टू स्कूल वाला टाइम चल रहा है, वेकेशन के बाद आप भी आए हैं। सो बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत फोटो भेजी है, एकदम एस्थेटिक। आपका नाम जो है इदरीस जी। ओके, इदरीस जी ने मुझे ये फोटो भेजी है, एंड उसके बाद हम देख लेते हैं गुड इवनिंग जी लिखा है इन्होंने, एंड श्रीनिवास इनका नाम है। श्रीनिवास जी ने बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही एस्थेटिक पिक्चर जो है वो मुझे भेजी है। पेड़ भी दिख रहे हैं, पानी भी दिख रहा है, सन भी दिख रहा है, कुछ गाड़ियां भी दिख रही है, अमेजिंग। लैपटॉप का तो देखो मैं इसे वॉलपेपर बना सकती हूँ। एंड मुझे जो है रेड्डी जी के नाम से जो है एक फोटो आया हुआ है, एंड इतनी ग्रीनरी कहाँ है, कहाँ से फोटो, कहाँ की फोटो भेजी है आपने ये मुझे। एंड सभ्यसाची ने जो है गुड आफ्टरनून कहा है, सभ्यसाची गुड इवनिंग का वक्त हो गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सबकी इतनी अमेजिंग अमेजिंग पिक्चर्स भेजने के लिए, और एंड कुछ लोग अभी भी लगातार पिक्चर्स भेज रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे यू नो ये पिक्चर्स देख कर, एंड इनमें से पक्का एक ना एक तो मेरा जो है वॉल पेपर बनने ही वाली है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है आपको एक बहुत ही अमेजिंग वाले गाने की ज़रूरत है, इसलिए प्यार की साइड इफेक्ट मूवी से एक अमेजिंग सा क्यूट सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

एबी डिल्लो की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। और इससे जो है मुझे ये याद आया कि एबी डिल्लो, ये जो मैं बोलती हूँ, इसका सुदेव जो है कितना मजाक उड़ाते थे। वेलकम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो, आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, मतलब लोगों से जो है लगाव हो ही जाता है। जैसे सुदेव और मेरा जो शो जो था, हम जब साथ में शो किया करते थे, तब लोगों को हमारी जोड़ी से जो है लगाव हो गया था। तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो लोग कहने लगे थे कि यार कशिश, आप और सुदेव जो है वो साथ में बहुत फ़न करते हो, सो साथ में ही शो किया करो। लेकिन फिर हम लोगों ने अलग अलग अपने अपने आपको अलग अलग टाइम पर एंटरटेन करना जो है वो शुरू कर दिया। सो लगाव तो देखो आम सी बात है, ह्यूमन नेचर है, हो ही जाता है। एंड मतलब चीज़ों से लगाव हो जाता है आपको, दूसरे इंसानों से लगाव हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपको आपके घर के कॉकरोच से लगाव हुआ है? नहीं हुआ है ना, बिल्कुल नहीं हुआ है ना। लेकिन जापानीज प्राइम मिनिस्टर को हुआ है। तो एक अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था कि जापान के लोग जो है अपने घर के पेट से यानी कॉकरोचेस से भी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि अभी रिसेंटली ये खबर आई कि पेस्ट कंट्रोल के बाद सूना सूना घर लगने लग गया उन्हें, क्योंकि उनके घर से सारे कॉकरोच चले गए थे। तो उनके स्टाफ को उन्होंने काफ़ी डांटा कि तुमने जो है ये पेस्ट कंट्रोल क्यों कराया, कॉकरोचों को क्यों दूर भगा दिया, मुझे अकेला अकेला फील हो रहा है। यार सीरियसली, जग सुना सुना लागे विदाउट कॉकरोचेस हमारे यहाँ? तो अगर आप रात को किचन में जाओ या अगर बाथरूम में जाओ और गलती से एक कॉकरोच दिख जाए तो जो है ऐसे जान निकल के जो है भांगड़ा करने लग जाती है और इन्हें जो है कॉकरोचेस के साथ रहने में बहुत मजा आ रहा है। बताइए आप, आपको ऐसा लगाव हुआ है किसी चीज से या किसी रेप्टाइल से या किसी जो है पेस्ट से? अगर लगा है तो फिर मतलब हो सकता है कि मैं ही अलग हूँ, आप सब बिल्कुल सेम हो। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करके आइए। उसके बाद चुटकी भर सॉन्ग वाला जो कॉन्टेस्ट है वो खेलेंगे हम। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास। Here we go.

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

खान जी बिल्ली बिल्ली आंख करते हुए आपके रेडियो सेट्स पर जो है जादू चला रहे थे, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। वेलकम जी, गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑल एफएम। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए, सलमान खान साहब से याद आया कि सलमान जो है वो हो सकता है कि कॉफी विद करण के नए सीजन के सबसे पहले गेस्ट जो है वो बने, ऐसा जो है सोशल मीडिया कह रहा है। अभी तक ऑफिशियल लिस्ट जो है वो नहीं जारी हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सलमान खान सबसे पहले गेस्ट हो, एंड उसके बाद यू नो सैयारा के जो दोनों एक्टर्स थे वो दोनों हो सकते हैं, एंड उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे लोगों का जो है स्पेक्यूलेशन हो रहा है, सिड एंड क्यारा हो सकते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे कपल्स जो हैं वो भी हमें इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं विजय एंड रश्मिका के लिए हूँ, क्योंकि ये दोनों ही अपनी शादी के बाद पहली बार जो है किसी इंटरव्यू में आ रहे हैं। उससे पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, लेकिन हाँ अब साथ में शादी के बाद पहली बार किसी यू नो बिग इंटरव्यू में हमें देखने को मिलेंगे। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी नई गॉसिप, काफ़ी नए मीम्स जो है वो हमें मिलेंगे, एंड करण जौहर ऑफकोर्स थोड़ी से यू नो चटपटे कम हो गए हैं वो, लेकिन फिर भी पूरी गॉसिप जो है अभी भी निकाल लेते हैं सेलिब्रिटीज में से। वैसे देखिए, अगर आपको जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है थोड़ा सा यू नो एक अलग विजन देना है, थोड़ा सा उन्हें फन कराना है, मस्ती कराना है, एंड उन्हें जो है रीएनर्जाइज करना है, तो देखिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया मेरे पास है। रेडियो ऑलिव की टीम यानी हम आरजेज जो है वो आपकी वर्क प्लेस पे, आपके ऑफिस पे आ सकते हैं बहुत सारा फन मस्ती मजा आपको कराने के लिए। हमें इनवाइट करने के लिए बस आपको 3311063 पर जो है मैसेज करना है और बताना है कि यार हैप्पीनेस लाउंज लेकर हमारे ऑफिस में आ जाओ, और हम आ जाएंगे। सो जितने भी मैनेजर्स हैं, एचआर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि रेडियो ऑलिव की जो पूरी टीम है एंड आरजेज हैं वो आपके वर्क प्लेस में आए, आपके ऑफिसेज में आए एंड आपके साथ बहुत सारे फन गेम्स खेलें, तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए 3311063 पर। फिलहाल अमेजिंग वाले गेम के लिए जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फेवरेट वाला गाना आ रहा है। सो ये जो गाना है इसे एंजॉय कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाकर। बंजारे जो डुओ है, म्यूजिक डुओ है, उसका ये गाना है, एंड ऑफ कोर्स स्पाइडर मैन के प्रमोशंस में हमने ये गाना काफ़ी देखा है। सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए। बरसात गाने का नाम है, बरसात तो देखो होने रही है, लेकिन गाना ही सुन लेते हैं, थोड़ा ठंडक से मिल जाएगा। मैं हूँ आपकी कशिश, एंजॉय कीजिए गाना और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Time check.
2: Brought to you by
1: Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:11. दैट इज 6:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
0: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
4: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
5: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
6: Nesto, all that you need.
7: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
8: I'm in number one, Radio Olive.
9: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
10: बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त evening.
11: जबरदस्त evening, मेरे भाई.
10: सिर्फ Radio Olive पर.
11: जबरदस्त evening,
10: Jio Bindas.
12: Zabardast evening. Make you drive golden with.
13: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
14: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है। रणबीर कपूर जो है वो फुल एनर्जी से स्क्रीन पे डांस कर रहे हैं एंड ये गाना इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा मैंने अपनी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने कंधों पर उठा रखा है एंड वक्त हो गया है चुटकी भर सॉन्ग वाला कॉन्टेस्ट करने का, यानी आपको चुटकी भर सॉन्ग यानी थोड़ा सा चंक ऑफ सॉन्ग मैं सुनाऊंगी एंड आपको जो है पता लगाना है अपने कानों से अपने दिमाग के कान और दिमाग के कोऑर्डिनेशन से बताना है कि आखिर ये गाना कौन सा है। कितना जानते हैं आप बॉलीवुड को, कितने फिल्मी हैं आप, ये आज पता चल जाएगा जब आप ये गाने जो है एंजॉय करेंगे। अब देखिए पिछले 3 दिनों से हम शाहरुख खान के गाने कर रहे थे तो मैंने आज सोचा कि आज थोड़ा सा डिसरप्ट करना चाहिए, वरना आप लोगों को तो मेरा तरीका पता चल जाएगा कि ये तो रोज शाहरुख खान के गाने लेकर आती है। सो आज जो है थोड़ा अलग वाला गाना है, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाइए और कान और ध्यान लगा कर ये गाना कौन सा है वो मुझे बताइए। 3311063 ये जो है हमारा नंबर है, इस पर आकर आपको मुझे बताना है कि ये गाना कौन सा है।

0: बताइए कौन सी मूवी का ये गाना है एंड गाने का नाम क्या है। 3311063 इज द नंबर। चुटकी भर सॉन्ग में आज का जो क्वेश्चन है वो यही है। सो फिलहाल जो है आप जल्दी जल्दी आंसर कीजिए मुझे एंड कूल सॉन्ग ऑफ द आर जो है वो भी इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Shake it, daddy.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास.
2: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
3: बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

अमेजिंग से चटपटे से डांस वाले गाने के उस पार मैं आ चुकी हूँ आपके लिए कॉन्टेस्ट का अगला पड़ाव लेकर। जी हाँ, ये अगला पड़ाव वो है जहाँ पर हमें पता है कि किन लोगों ने पहले आंसर दे दिया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी हमें सुनना शुरू किया है उनको भी हमें एक मौका दे देंगे। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, मैंने ना आपसे थोड़ी देर पहले चुटकी भर सॉन्ग में जो है एक अमेजिंग वाला जो गाना है वो आपको सुना के ये पूछा था कि यार ये गाना जो है कौन सी मूवी का है और इस गाने का नाम क्या है। अगर आपने नहीं सुना था तो मैं एक बार और आपको सुना देती हूँ, जरा कान और ध्यान लगा कर सुनिए।

अगर आपने भी पहचान लिया है कि ये कौन सी मूवी का गाना है और गाने का नाम क्या है, तो जल्दी से 3311063 पर मैसेज करके बता दीजिए, जिस तरीके से हमारे बाकी लिसनर्स ने हमें बताया हुआ है। सो अस्मा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, उसके बाद सोहन जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑडियो नोट में, एंड राहुल जी ने हमें एक्टर का नाम बता दिया है एंड मूवी का नाम नहीं बताया, एक्टर और गाने का नाम बता दिया है। सो आप लोग भी जो है हमें बता सकते हैं 3311063 पर मैसेज करके कि यार ये चुटकी भर सॉन्ग जो आपने सुना ये कौन सी मूवी का है और इस गाने का नाम क्या है। बाकी और विनर्स के नाम जो है हम धीरे धीरे डिस्क्लोज करते रहेंगे। बाकी आप लोगों की बॉलीवुड की नॉलेज देखकर तो मैं इम्प्रेस ही हो गई। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पर, चटपटी बैडीज, अगर आपने वर्ड सुना हो उनके बीच में तो ये गाना काफ़ी वायरल है जेंजीज के बीच में। सो वॉल्यूम बढ़ाकर रेस 2 का गाना जो है इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

And surprising thing is, it actually worked. एक सील्ड कोकोनट का पानी 100% स्टेराइल यानी बैक्टीरिया फ्री होता है. इसका सॉल्ट शुगर बैलेंस हमारे ब्लड से काफी मैच भी करता है, जिससे हमारी बॉडी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है. हालांकि इसमें पोटेशियम हाई होता है, यानी लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन अर्जेंट सिचुएशंस के लिए ये एक बढ़िया लाइफ सेविंग हैक है. तो अगली बार जब आप नारियल खरीदें, याद रखें कि आप नेचर का अल्टीमेट मेडिकल गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं. विश यू अ वेरी हैप्पी

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ, स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल, नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: Hi, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: ओए होए, दिलजीत पाजी का गाना जरा दिल खुश कर देता है यार। मतलब किसी ने सोच के दिलजीत पाजी का नाम दिलजीत रखा होगा, क्योंकि हर दिल को जीतने की अदा अगर किसी को आती है तो उसका नाम दिलजीत तो देखो होना ही चाहिए। मैं सोच रही हूँ अपना नाम भी दिलजीत रख लूँ, क्या बोलते हो? आपका दिल जीत पा रही हूँ या नहीं जीत पा रही हूँ? वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। आप देखिए, मैंने आपसे ना ब्रेक पे जाने से पहले और कुछ गानों से पहले एक क्वेश्चन पूछा था आपको, चुटकी भर सॉन्ग में गाना सुनाया था एंड पूछा था यार ये गाना जो है ये इसका नाम क्या है और ये कौन सी मूवी का है। सो एक बार और आपको ये गाना जो है वो मैं सुना देती हूँ, अगर किसी ने नहीं सुना तो उनके लिए।
1: जाए जाए जाए जाए एक बार जो जाए जबान फिर ना।
0: मतलब जब ये गाना रिलीज हुआ था ना तो सब लोग सब जो है एक टॉवल लेकर सलमान भाई की तरह जो है डांस कर रहे थे एंड बाकी सबका तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं भी कुछ 3-4 साल की थी एंड ये ना पहली मूवी थी जो मैंने देखी थी। कल इसकी स्टोरी जो है वो मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से मेरे पापा जो है एक DVD लेकर आए थे और उसमें ये मूवी थी एंड जब भी कुछ भी होता था तो TV पे ये मूवी लगा दी जाती थी एंड मैं ये देखती थी। तो सबसे पहली मूवी अपनी लाइफ की जो मैंने देखी है वो ये मूवी है। मूवी का नाम है मुझसे शादी करोगी एंड गाने का नाम है जीने के है 4 दिन एंड ये गाना इतने फन में लाइफ की फिलॉसफी बता देता है कि देखो जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। मतलब देखो जीने तो देखो 4 दिन में ही है, अब उसमें से भी 4 दिन जो हमारे जीने के हैं उसमें से 5 दिन जो है वो हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज वेंसडे है, बस कल का दिन और उसके बाद वी एंड। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर दिया है एंड पता है ये वाला जो कॉन्टेस्ट है इसमें मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि सब लोग जो है वो आंसर कैसे दे रहे हैं पता है? हाय कशिश मुझसे शादी करोगी, हाय कशिश मुझसे शादी करोगी, सो इट्स फन ओके। लेकिन अजीत डेविड जी ने जो है एक ऑडियो नोट भेज कर आंसर दिया है एंड अजीत जी आई मस्ट से आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग एंड आप सबका भी काफ़ी शुक्रिया जिन लोगों ने हमें आंसर दिए हैं। बाकी देखो थोड़ी सी देर में और बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं, नेम गेम भी हम खेलेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है अपडेट्स जानने चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है कतर में एंड क्या कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। अपडेट्स बेसिकली आपके लिए ज़रूरी हैं, सो थोड़ी सी देर में आपके लिए ऑल ऑफ अपडेट्स आ रही हैं, उसे इंजॉय कीजिए एंड बाकी आपकी कशिश के साथ आपको स्टे ट्यून रहना है और कहते रहना है जियो बिंदास। फिलहाल ऑल ऑफ फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ऑरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ऑरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

0: trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
1: तो जी वक्त हो गया आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 7:08. दैट इज 7:08. स्टे ट्यून्ड. जियो विंदास
2: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन. तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा.
3: Hi, मैं हूँ दिव्या दत्ता and you're listening to Radio Olive Jio Bindas.
4: Olive सुनो Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
5: बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त evening. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास.
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: नंबर वन चटपटा गाना, नंबर वन मूवी यानी कुली नंबर वन से। और आज मैं जो है काफी रिलेट कर पा रही हूँ कुली नंबर वन से। बिल्कुल एकदम सुर्ख लाल कलर का ब्लेजर पहन के आ गई हूँ मैं। अगर इंडिया में मैंने पहना होता तो कोई पीछे से मुझे बोल देता, एक्सक्यूज मी ये बैग उठाएंगी प्लीज। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफेयर। मैं हूँ आपकी कसुर संशो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, वक्त हो गया है जेन जी डिकोडेड में आज का वर्ड डिकोड करने का। अब देखो यार, कभी भी आपके दोस्त जो है या आपकी रिलेटिव्स या कोई भी आसपास का जान पहचान का इंसान जब आपके लिए कोई ऐसी चीज कर देता है जिससे आपको एकदम ही वो वाली फीलिंग आ जाती है ना कि आय हाय ये क्यों कर दिया, ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको जो है एक अलग अजीब सी फीलिंग आती है ना कि यार ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आया मुझे, तो उसे कहते हैं इक। सो इफ अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सो यू कैन से दैट आई एम गेटिंग इक, I don't like it, I am getting the ick, I don't like your dress, it's I feel ick, I get ick because of your behavior. So आपको कोई भी पसंद, अगर कोई भी चीज़ अगर पसंद नहीं आ रही है, आपको बुरी फीलिंग हो रही है उस चीज़ के साथ, तो आप कह सकते हो I feel ick, मुझे इकी सी फीलिंग हो रही है, I just get an ick. So ick is the new word for I hi, मतलब I hi में गंदा सा मुँह बन जाता है ना, लेकिन ick में जो है थोड़ा सा नहीं बनता है। तो अगर आपको किसी प्रोफेशनल सेटअप में या जेन ज़ीज़ के साथ बैठे हुए ऐसा कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो कि यार I am getting an ick, I-C-K ick. अगर ऐसे ही और वर्ड्स जो है आपको जानने हैं, आपको कोई ऐसा वर्ड है जो समझ नहीं आ रहा है कि कशिश ये क्यों कहा जा रहा है, सो आपकी ये जेन ज़ी टीचर आपके लिए बैठी हुई है यहीं पर रेडियो ऑलिव पर आपको सब कुछ बताने के लिए। फिलहाल अब मेरे जो झुमके हैं आज मैंने पहने नहीं हैं, लेकिन गानों में झुमका जो है अच्छा लगता है, मतलब कानों में झुमका और गानों में झुमका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे वाइब मेंटेन होती है। सो व्हाट झुमका गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, एंड कहते रहिए जियो पिंदास, ये ज़बरदस्त गाना जो है इसको इन्जॉय करके आइए। उसके बाद बहुत सारी बातचीत अभी जारी रखनी है।
1: अब सुनिए ऑलिव का ज़बरदस्त है।

0: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास.
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

ट्रैक के बाद। मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक फन वाली बातचीत लेके। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कजुसन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, थोड़ी देर पहले हमने बात करी एक जेंजी टर्म की, लेकिन इन जेंजी टर्म्स के साथ साथ जेंजी जो है काफी सारी ऐसी नए रूल्स भी ला रहे हैं और आपको ओल्ड बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप किसी जेंजी के साथ जो है आधा घंटा बैठिए और आपको जो है ओल्ड फील ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पूरी कोशिश करते हैं, कायनात की हर जो है तरकीब लगा देते हैं सिर्फ आपको ओल्ड फील कराने में, आपको ये फील कराने में कि आप तो बहुत पहले पैदा हुए थे, आपसे आपने तो डायनासोर्स के साथ जो है वो डिनर किया होगा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल देते हैं। एंड अब एक नया तरकीब जो है वो निकाली है जेंजीज ने। ये जेंजीज ने बोला है कि आप ओल्ड हैं अगर आपकी जीमेल जो है वो आपका नाम है। अब देखो, कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिन्होंने अपनी पहली ईमेल जो है वो अपने नाम से बना ली होती है, जैसे मैंने भी बनाई और मैं जेंजी हूँ। लेकिन अब जेंजी का ये कहना है कि अगर आपने अपने नाम से ईमेल बनाई हुई है तो आप ओल्ड हो। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे और कौन कौन से तरीके हैं जिससे जेंजीज आपको ओल्ड फील कराते हैं। 3311063 पर जो है मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास। सोनू निगम और हीर की आवाज में तबस्सुम गाने का नाम है, कितना खूबसूरत नाम है। सो इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में।

Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas. टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्नल ग्रुप नाउ

बड़ा ही सोलफुल सा ट्रैक जो है आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए शो लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग। एंड वक्त हो गया है नेम गेम खेलने का, जहां पर आपके पास वक्त है जब तक मैं बातें कर रही हूँ तब तक ही अपना नाम आप भेज सकते हैं 3311063 पर, 3311063 पर। जल्दी जल्दी अपना नाम लिख कर मुझे भेज दीजिए एंड देखते हैं किसकी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो है वो चलती है, कौन टाइप जल्दी कर लेता है, कौन जल्दी सेंड कर देता है। 3311063 पर जल्दी जल्दी अपने नाम जो है वो मुझे भेजिए एंड मैं जो है उन्हें रीड आउट लाउड करूंगी। और बिल्कुल वही वाली फीलिंग मुझे आ जाती है जब भी मैं ये गेम खेलती हूँ कि जैसे मैं जो है वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ या अपने कजिन्स के साथ जो है वो वाला गेम खेल रही होती थी, स्कूल क्लास क्लास, तो उसमें क्या होता था ना अटेंडेंस लेते थे। तो बस चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं। दीपक कांबले जी ने जो है अपना नाम लिखा है, रमनप्रीत जी ने अपना नाम लिखा है, मोहम्मद यूसुफ खान जी ने अपना नाम लिख दिया है, फरीदा जी ने हाय लिखा है, नीलेश जी ने अपना नाम लिखा है, रमन सिंह जी ने गौरांच लिखा है एंड बहुत पाकीज़ा नाम जो है वो भेजा गया है, कायरा नाम जो है वो नीलेश जी ने भेजा है, थैंक यू सो मच। एंड महमूद खान साहब जी ने बहुत पहले ही अपना नाम जो है वो हमें भेज दिया था, यानी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो थी वो इनकी थी। शबीर शेख जी ने अपना नाम भेजा है एंड श्रीनिवास जी ने भी अपना नाम बहुत शुरू में भेज दिया था एंड उसके बाद रमन जी ने एक और नाम भेजा है, बसंत। थैंक यू सो मच आप सबके इस फास्टेस्ट फिंगर के लिए। यार ये गेम मुझे लगता है कि हमें और खेलना चाहिए ना, थोड़ा जल्दी खेलेंगे कल से हम ये गेम एंड बहुत ही मज़ा आया मेरे को ये गेम खेल के। तो फिलहाल आपके लिए जो है एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय करो। उसके बाद ज़रा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, सो वॉल्यूम बढ़ाओ एंड इन्जॉय करो ये गाने और स्टे ट्यून्ड रहो आपकी कशिश के साथ। कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे 8:12 दैट इज 8:12. स्टे ट्यून्ड टू बिंदास.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दानातल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुक वाकिफ अलखोर.
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
4: गुलराज सिंह
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
4: जियो बिंदास.
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास,
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
9: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: देखिए जी, दिल का टेलीफोन भले ही कितना भी रिंग रिंग रिंग करता रहे आपका, लेकिन आपको जो है गाड़ी चलाते हुए फोन बिल्कुल यूज नहीं करना है। ये सेफ नहीं होता यार, ऊपर से आपको चालान से भी बचना चाहिए। वेलकम जी, गुड इवनिंग, 106.3 रेडियो ऑलिफेयर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, आपको चालान से बचाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई है, आपको सेफ फील कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो है वॉर्न किया है जितने भी लोग ड्राइव करते हैं उन सबको, कि आपको जो है इम्प्रॉपर यूज नहीं करना है हाई बीम्स का। यानी आप कई बार चलते हुए हाई बीम जो है वो ऑन कर देते हो अपनी गाड़ी की, एंड उससे बाकी ड्राइवर्स को जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, एंड इससे जो है एक्सीडेंट का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। सो ये आपके लिए तो अनसेफ है ही, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी बहुत अनसेफ है। सो जब भी आप ड्राइव करें, स्पेशली अभी जितने लोग मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, अगर आपने हाई बीम ऑन रखी हुई है या आप जो है हाई बीम अक्सर यूज करते हैं, तो उसका यूज थोड़ा सा संभल के करें, क्योंकि ये आपकी एंड आपके साथ की जो फेलो ड्राइवर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है, थोड़ा अनकूल भी हो सकता है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स को रूल्स की तरह तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक कूल चीज की तरह भी फॉलो करना चाहिए। अगर आप रूल्स फॉलो करने को, डिसिप्लिन में रहने को कूल बना देंगे ना, तो अपने आप भी कूल हो जाएंगे। सो फिलहाल इस कूलनेस की बात करते हुए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। गाने का नाम है जरा पास आओ, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करते जाओ, और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.
3: चेक चेक

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

इस गाने का नाम सांसों को सांसों में ढलने दो जरा क्यों रखा, जब जनरली बस हम तुम भी रख सकते थे। हम तुम मूवी का नाम है और इस गाने का नाम आराम से हम तुम हो सकता था, लेकिन नहीं, बनाने वालों ने नाम रखा सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। इन्हें पता नहीं है कि हम सांसों की स्पेलिंग कितनी गलत लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। वेलकम जी, गुड इवनिंग, 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कसूस, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा के रखा है। अब देखो यार, क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में एक ना एक दोस्त जरूर होता है जो आपको मूवीज रिकमेंड करता है, गाने रिकमेंड करता है, एंड बस आपकी लाइफ का वो दोस्त मैं बनना चाहती हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी पजल्ड फील करो तो कुछ ऐसी मूवीज हैं जिन्हें आप जाकर एक बार देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, एंड अगर आपने पहले देखी है तो ऐसे टाइम पे जब आप लो फील कर रहे हो तो आपको एक बार रीविजिट कर लेनी चाहिए। सबसे पहली मूवी है धनक, 2015 की ये मूवी है। अगर आपने वो वाला वायरल गाना सुना है चार चिराग तेरे नौबत बाजे, वो वाला जो गाना है वो इसी मूवी का है, और इसमें जो है दो भाई, मतलब एक भाई बहन की स्टोरी है, एंड बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है किस तरीके से वो आगे अपने म्यूजिक के साथ बढ़ते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद लैला मजनू, ऑफकोर्स इम्तियाज़ अली मूवी लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी आपको देखनी चाहिए। फोटोग्राफ एक और मूवी है, 2019 की मूवी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड सानिया मल्होत्रा। ओ माय गॉड, ये पेयर आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये मूवी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद अक्टूबर 2016 की मूवी है, एंड वरुण धवन ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की है लेकिन इससे अच्छी मूवी नहीं की है। सो अक्टूबर एक बार जाकर ज़रूर से देख लेना। फिलहाल एक बहुत अमेजिंग गाना जो है वो भी आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर ये इन्जॉय करो। और अगर मूवीज़ के बारे में और जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 3311063 पर। मैं हूँ आपकी कशिश, वॉल्यूम बढ़ाओ, गाना इन्जॉय करो और कहते रहो आपकी कशिश के साथ जी को बिंदास।

वजह ये कि इसका हर एक हिस्सा हमारे बहुत काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिंपल सा फ्रूट किसी की जान भी बचा सकता है? पास्ट में जब कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं थे, तब डॉक्टर्स ने आईवी ड्रिप की जगह डायरेक्टली फ्रेश कोकोनट वाटर यूज किया है। एंड सरप्राइजिंग थिंग इज कि इट एक्चुअली वर्क्ड। एक सील्ड कोकोनट का पानी 100% स्टेराइल यानी बैक्टीरिया फ्री होता है। इसका सॉल्ट शुगर बैलेंस हमारे ब्लड से काफी मैच भी करता है, जिससे हमारी बॉडी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि इसमें पोटेशियम हाई होता है, यानी लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन अर्जेंट सिचुएशंस के लिए ये एक बढ़िया लाइफ सेविंग हैक है। तो अगली बार जब आप नारियल खरीदें, याद रखें कि आप नेचर का अल्टीमेट मेडिकल गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी कुकिंग।

0: कोक स्टूडियो पाकिस्तान का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। लेकिन अब देखिए जाने का जो है वो वक्त आ गया है। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे इस जबरदस्त इवनिंग। अब देखो यार, अभी नहीं जाऊंगी तो कल लौट कर वापस कैसे आऊंगी। सो अभी मैं चलती हूँ। आप जो है जाकर सबसे पहले तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कंटेंट हम वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। चाहे आपको किसी रेस्टोरेंट का जो है सजेशन चाहिए हो, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको हंसना हो, आपको वो वाला कॉन्टेंट वहाँ पर मिल जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको वो वाला कॉन्टेंट भी मिल जाएगा। एंड साथ में सबसे प्यारी चीज़ जो मिलने वाली है वो है हम सभी आरजेज, आपको उसी पेज पर मिल जाएंगे। तो जाइए वहां पर, मैसेज कीजिए, हमारी वीडियो से इंटरैक्ट कीजिए। एंड बाकी हमारा नंबर तो आपको बताइए 3311063। बाकी जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोपहर में जब भी बाहर निकलो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। मैं चलती हूँ, मुझे याद करते रहना, दुआ करते रहना एंड कहते रहना जियो पिंदास।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-561-23.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल, नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, Radio Olive 106.3

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लव।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
3: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Chandni.

listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: Radio Olive 106.3 FM. Gio
1: Bindas. Chandni Raate Chandni.